FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। प्रातः के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारे केंद्र के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सारे श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में PM फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे मानव, तू इस दुनिया में आया है तो अपने दैनिक कर्मों को निपटाते हुए हर कार्य को सुचारू रूप से कर, क्योंकि जिस दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है उस दिन की हर राह आसान हो जाती है। तो प्रभु का स्मरण मन को शांति, बुद्धि को प्रकाश और जीवन को नई दिशा देता है।

हर सुबह ईश्वर हमें एक नया अवसर देते हैं बीती भूलों को सुधारने और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए उगते सूरज के साथ अपने मन में भी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता का प्रकाश लाइए।

हर सांस प्रभु का दिया हुआ अनमोल उपहार है। आज का दिन उनके चरणों में समर्पित करें। सुबह की पहली प्रार्थना पूरे दिन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इसीलिए विश्वास बनाए रखें, समय आने पर वह आपको सब कुछ देंगे।

श्रोताओं, आप सब पर प्रभु परमात्मा की कृपा यूं ही बने रहे, इसी आशा के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। संगीत रचना सतीश भाटिया की है, गायक कलाकार हैं श्रीकांत परगांवकर और ए हरिहरन।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्रीराम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्रीराम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री राम चेत मानस गान। संगीत रचना सतीश भाटिया की थी। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और श्रीकांत परगांवकर। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज का पंचांग, आज है रविवार, विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। ऋतु चल रही है वर्षा। सूर्योदय हुआ प्रातः 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें टुडेज अपडेट की।

श्रोताओं, आज प्रातः 11 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात साझा करेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से। डीआरआई ने पटाखों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, चीन से आए पटाखे जब्त किए।

2026 चार धाम हेलीकॉप्टर संचालन का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने से दुर्घटना मुक्त संचालन सुनिश्चित हुआ।

IGCS अक्षय को भारतीय अंतरिक्ष रक्षक बेड़े में किया गया शामिल। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 जून 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में नई पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय को शामिल करके अपना बल आधुनिकीकरण में एक और मील का पत्थर हासिल किया।

0: उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में नाद प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की इस 570वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बेंगलुरु की मिनी भारत के रूप में पहचान कैंपेगौड़ा की दूरदृष्टि का परिणाम है। कैंपेगौड़ा की सतत विकास, सामाजिक सद्भाव और समावेशी शासन की दूरदृष्टि आधुनिक भारत को प्रेरित करती है। महान राष्ट्रों का निर्माण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने जीवन काल से आगे की सोचते हैं। ये कहना था उपराष्ट्रपति का कैंपेगौड़ा जयंती समारोह में। श्रोताओं, ये थे टुडेज अपडेट।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: श्रोताओं, आइए आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। शाम 6:30 का समय रहेगा हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। शाम 6:20 का समय नियत है कार्यक्रम गीता संदेश के लिए, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी से अध्याय 7 के श्लोक 8-11 तक की व्याख्या। शाम 5:30 पर हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम, माफ कीजिए, शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की। तो सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अमरीक सिंह के साथ शाम 5:30 पर। बच्चों की बगिया सजी की प्रातः 10:30 पर कार्यक्रम का नाम है बाल सभा। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच का लुत्फ उठाइएगा। प्रातः 10 बजे आज होगा सजी फोन इन कार्यक्रम। गैर फिल्मी गीतों और नगमों से सजा कार्यक्रम होगा स्वरांजलि प्रातः 9:30 पर। आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे, समय आपका जाना पहचाना, प्रातः 8:30 से प्रातः 9:30 पर, जिसमें आज होगी चर्चा पीवी नरसिम्हा राव जयंती पर और आईसीसी T20 महिला विश्व कप में कैसा रहा अब तक का भारत का प्रदर्शन। प्रातः 7:40 का समय नियत है कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा का, इसमें आप सुनते हैं लोकगीत। आज आपको सुनवाएंगे कुछ पंजाबी शब्द। प्रातः 7:10 पर लुत्फ उठाइएगा सदाबहार गीतों के कार्यक्रम, जी हाँ, दिल पुकारे का। गाने नए पुराने, इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए शाम 5:05 पर। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में तो आप सुनते हैं कार्यक्रम रूपरेखा शाम 5 बजे और प्रातः 7:50 पर, 6:50 पर FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे देशकांत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे देश कान FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम दिल पुकारे के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोष कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य 3-दिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतं उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह संपर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदायो किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website, and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving health care tracking and welfare accessibility for families. Earlier in the day, Mr. Shah will attend a special Chintan Shivir for booth presidents and Shakti Kendra in charges in Ahmedabad, during which he will review grassroots strategies and interact with local party members. The Minister

0: Mansarovar Yatra without the required entry permit and visas for China. It said citizens are advised not to commence their journey from India until all the required travel documents have been obtained for undertaking the complete journey. Union Ministers of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel has said that India has made significant progress in healthcare over the past 12 years and is working toward the broader goal of universal health coverage, ensuring accessible, affordable and quality healthcare for every citizen. Speaking at the 9th edition of the Doctor's Day Conclave of a private media channel program, Ms. Patel highlighted Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana as one of the world's largest health assurance programs, covering around 62 crore people, and said it is helping families access treatment with financial protection. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rav Ugale to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi Police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting three alleged members of the racket. The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1,430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. In the FIFA World Cup, England defeated Panama 2-0 in their Group L match at New Jersey Stadium in the United States this morning. Jude Bellingham and Harry Kane scored a goal each as England secured the top spot of Group L. Goa's 14-year-old international master Ethan Vaz has become India's 96th chess grandmaster after securing his third and final grandmaster nom at the Sarajevo GM Mix tournament in Bosnia and Herzegovina. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम दिल पुकारे। कार्यक्रम दिल पुकारे में आप सबको आपकी अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी का सादर प्रणाम। रविवार की वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ श्रोताओं, संडे है, रविवार है, गर्मी बेहद हो रही है ना, और पसीना आ रहा है, उमस हो रही है। तो भाई, मौसम की नज़ाकत को समझिए और अपने अपनों का विशेष ख्याल रखिए। और इतनी गर्म हवाओं के साथ गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीतों को संजो कर ले आया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। अगर आप ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप पूरे विश्व में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों का आनंद उठा पा रहे हैं, लुत्फ उठा पा रहे हैं। और अगर आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जुड़े हैं तो आपकी जानी पहचानी FM 101.4 MHz पर, तो भाई ध्वनि तरंगों के साथ चलिए इस प्यारे से सफर में। कार्यक्रम का पहला गीत 1970 में आई फिल्म द ट्रेन से मुख्य भूमिकाओं में नजर आए राजेश खन्ना और नंदा। आपको बता दें कि 1967 की मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस का ये रीमेक था और श्रोताओं बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी थी ये। और आपको बता दें कि इसका जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और युगल स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। तो चलिए गुनगुनाते हैं और चलते हैं सरगम के साथ।

बातों से किसी का पेट भरता नहीं।

श्रोतों कार्यक्रम सुन रहे हैं आप दिल पुकारे। कार्यक्रम का अगला गीत 1980 में आई फिल्म स्वयंवर से। गीत को गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। संगीत राजेश रोशन का है, गीत गुलजार का, और मुख्य कलाकार इसमें नजर आए संजीव कुमार, शशि कपूर, विद्या सिन्हा और मौसमी चटर्जी। और आपको बता दें कि इस गीत को जो आप सुनने वाले हैं उससे पहले आपने सुना फिल्म मिस्टर नटवरलाल का गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत राजेश रोशन का था, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म स्वयंवर का यह गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वापस से। आपको बता दें कि इस फिल्म को निर्देशन किया था सत्येन बोस ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, गीत मजरूर सुल्तानपुरी का। जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें युगल स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए अजय और अलका।

श्रोताओं, प्यारा सा संगीत आप सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और फिल्म का नाम है जुदाई। 1980 में श्रोताओं ये फिल्म आई थी। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए जितेंद्र और रेखा, और जो गीत हैं वो आनंद बख्शी के हैं, युगल स्वर जो है वो हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं 1982 में आई फिल्म भीगी पलके से। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए राज बब्बर और स्मिता पाटिल। आपको बता दें कि संगीत जुगल किशोर और तिलक राज का था, संगीत एम जी हशमत का, और जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें युगल स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के।

0: श्रोतों, कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आपने सुना। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम दिल पुकारे। अब आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा में, कुछ पंजाबी शब्द बिंदर बिंदा के स्वर में। कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
4: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
3: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
4: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
1: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
2: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
1: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा,
2: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र,
2: 8708903436।

हाथ मारा दिसदाना किधरे नाग मारे फंकारे हाथ मारा दिसदाना किधरे नाग मारे फंकारे सी चित्रे बोल रहे हाय सी चित्रे

के नित हो जा खबरदार, मैनू हुक्म मालक दा हो गया। मैनू हुक्म मालक दा हो गया, मैं किवें करां तकरार।

वेले सिर भगवान ने सीतार ले आए अवतार उन्हें फड़ ली पिछों वाण के

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा में पंजाबी शब्द, जिसे गाया था बिंदर बिंदा ने। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम सुबह सवेरे के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ सब मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड

0: कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल
1: जी। लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण

0: किया देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, जीवन का हर पल सिखाता है रुकना कभी नहीं, आशा का दीप जलाए रुकना, झुकना कभी भी नहीं, क्योंकि मुस्कानों से महक उठे हर राह, हर एक द्वार, प्रेम और अपनापन ही है जीवन का सच्चा श्रृंगार। दुआ है मेरी, ईश्वर का आशीष सदा तुम्हारे साथ बना रहे, हर कठिन राह में तुम्हारे लिए आसान बनती रहे। जी हाँ श्रोताओं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमेशा हंसते रहे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और आज है आपके साथ आपकी अपनी हंसती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी। जानकारी और मनोरंजन के पिटारे को संभाले हम आ चुके हैं। जी हाँ, कभी छतरी में छुपाते हैं, कभी दुपट्टे से छुपाते हैं, पर आकाशवाणी पर जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे है ना, उसको छुपा कर ले ही आते हैं आपकी सेवा में। तो देखते हैं आज इस पिटारे में क्या छिपा हुआ है हमारे श्रोताओं के लिए। तो भाई, ढेर सारा मनोरंजन तो है, ढेर सारी जानकारी भी है, और बहुत कुछ ऐसा है जो आप सुनना चाहते हैं और जो हम आपसे जानकारी साझा करना चाहते हैं। और श्रोताओं, सबसे मुख्य बात आपकी भागीदारी। आपकी भागीदारी के बिना तो ये कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता। कार्यक्रम में आपकी भागीदारी कैसे बनती है, एक आसान से प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए भाई, ज्यादा बातें करते ना हुए पहले आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, पर इसी विश्वास के साथ, इसी निवेदन के साथ कि आप वो प्यारा सा पासवर्ड जरूर डालेंगे जो हर कार्यक्रम में हम आपके लिए बोलते हैं, वही सदा मुस्कुराने वाला। तो हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि गंदा सा मुंह बनाने से जीवन की जो उलझने हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो हंसिए मुस्कुराइए और कार्यक्रम का आनंद उठाइए पूरे 60 मिनट तक।

जी हाँ श्रोता हूँ, जिंदगी दो पल की और वह दोनों पल हमने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र और अपने श्रोताओं को दे दिए। तो हंसिए मुस्कुराइए, क्योंकि अब हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। हमारा प्रश्न भाई बड़ा ही अलग सा है आज, देखते हैं हमारे कितने श्रोता हमसे जुड़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रश्न के रूप में इस गीत को सुनिए।

0: मैं बन का पंछी बन के।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये जो गीत सुन रहे हैं ना, इसमें जो पुरुष गायक है और जो महिला गायक है, आपको उन दोनों का नाम बताना है कि इस गीत को, इस प्यारे से गीत को किस किस ने गाया, युगल स्वर किसके हैं। दोबारा सुनिए। बस बस बस, हमने आपको गीत आखिरकार सुनवा दिया, पूरा गीत आपको सुनवाएंगे जब हम आपका, आपको इसका उत्तर बताएंगे। तो फिलहाल आपको उत्तर बताना है कि इस जो गीत को हमने आपको सुनवाया है, इसमें युगल स्वर किस किस पार्श्व गायक और गायिका की हैं। तो अलग सा प्रश्न आज चुनकर लेकर आए हैं आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है, गायक गायिका का नाम बताना है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से 9466021336 पर। और हम कर रहे हैं आपके टेक्स्ट मैसेज का इंतजार

7:45 तक। विनम्र निवेदन यही कि आप जब प्रश्न का उत्तर दें तो प्रश्न का उत्तर आपके नाम और क्षेत्र के नाम के बीच में पर्याप्त स्थान हो। प्रश्न का उत्तर हिंदी में ही दीजिए और दो नामों के बीच में कॉमा यानी थोड़ा सा गैप जरूर दीजिए, जिससे हम सही प्रकार से उच्चारित कर पाए और हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, उसको बीच में कोई भी ना रोक पाए। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो गीत हमने आपको सुनवाया है वो गीत किसने किस किस गायक कलाकार ने गाया है। दोबारा सुनिए,

आशा करते हैं आपने इस गीत को, गीत के बोलों को सुन लिया होगा और आप पहचान गए होंगे कि गायक कलाकार कौन कौन है। अब कार्यक्रम का अगला गीत, आपकी और हमारी दोस्ती को नजर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर?
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोता, कई बार क्या होता है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें असफलता मिल जाती है। पर श्रोता, असफलता यह नहीं बताती कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह बताती है कि आपको अभी और सीखना है। हर ठोकर इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते, वही एक दिन जीतते हैं। हार केवल तभी होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि मुश्किल समय हमें धैर्य और मेहनत का महत्व सिखाता है। एक खराब परिणाम आपका भविष्य तय नहीं करता, क्योंकि सूरज भी हर शाम ढलता है, लेकिन अगली सुबह फिर चमक जाता है। इसीलिए श्रोताओं, असफलता अनुभव देती है और अनुभव सफलता की राह बनाता है। धीरे धीरे चलना भी ठीक है, बस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी में से बदबू होने लग जाती है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जो गिरकर उठना सीख जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल देर से सही मिलता जरूर है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम खेतों में किसान अनाज बोता है तो वो ये नहीं देखता कि बीज सीधा है या उल्टा, बस वो बो देता है और उसके बाद उगना उसकी किस्मत होती है। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही पल होते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई असफलता आ गई है हमारी जिंदगी में, पर हमें उस टाइम निराश नहीं होना और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना है।

0: चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
7: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
8: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
7: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।

होगा, क्योंकि आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, पूछते नहीं, पूछा था नहीं था हमने आपको, हमने आपको ये गीत सुनवाया था और आपको इसके जो गायक कलाकार हैं उनके नाम बताने थे। तो गीत के मुखड़ा जो है दोबारा सुनते हैं।

श्रोताओं, मैं बन की चिड़िया बन बन बन के बोलूं रे, ये गीत भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर का सबसे लोकप्रिय और यादगार युगल गीतों में से एक है। ये गीत वर्ष 1936 की फिल्म अछूत कन्या में फिल्माया गया था और आज भी भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। श्रोताओं, और आपने ये दिखा दिया है कि हमारे श्रोता फिल्म की कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, बॉलीवुड की बहुत अच्छी जानकारी उनको है। अरे, हमने आपको बताया नहीं गायक कलाकार कौन थे? गायक कलाकार थे अशोक कुमार एवं देविका रानी। संगीतकार थे सरस्वती देवी, जो भारतीय सिनेमा की पहली प्रमुख महिला संगीतकारों में से एक थी। गीतकार थे इस फिल्म के, जो आपने गीत सुना उसके, थे जेएस कश्यप, और इसके निर्माता संस्था थी बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। और आपको बता दें, ये गीत फिल्म के नायक प्रताप अशोक कुमार, नायिका कस्तूरी देविका रानी पर फिल्माया गया था और बहुत ही सुपर डुपर हिट है। और ये बता दें, हिंदी सिनेमा जगत के शुरुआती दौर के सबसे प्रसिद्ध युगल गीतों में से एक है। इसमें अशोक कुमार ने स्वयं अपनी आवाज दी थी और गीत बेहद ही मधुर है। और अछूत कन्या भारतीय सिनेमा की पहली सफल सामाजिक फिल्मों में मानी जाती है, जिसमें अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव जैसे गंभीर विषय को उठाया गया था। और ये जोड़ी घर घर बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी श्रोताओं इस गीत के बाद। तो गीत आपको पूरा सुनवाएंगे, पर सबसे पहले आपको बताएं कि किन किन श्रोताओं ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास किसका नाम आया है। हमारे पास सबसे पहले जो नाम आया है वो आया है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद का, एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से कुमार, ये है बीपी गौतम और सरिता गौतम जी। ये श्रोता ललिता सिंह और भगवान सिंह सिलई हिमाचल प्रदेश से। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया छत्तीसगढ़ से। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश से। ये श्रोता है हमारे छत्तीसगढ़ से भाटापारा जतरंगी से हीरामणि वर्मा, उनके साथ है पारसवणी वर्मा, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव, उनके साथ है निशांत ध्रुव, रवि कुमार राव, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राव, राहुल है योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से। अगले श्रोता है कृष्णा और टिया सोलन हिमाचल प्रदेश से। चंडीगढ़ से है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। ये है रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और इनके साथ है आशा रानी। अम्बा चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभी और इनके साथ है अनस और रेहान। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और इनके साथ है सोमनाथ कालिया। सुनील पाठक कमल पाठक है गव्या मल्होत्रा के साथ अनारकली बाजार जगराव से। कृपया करके हिंदी में नामों को लिखे तो बेहतर होगा श्रोताओं, बड़े ही आसानी हो जाती है पढ़ने में। एमएलबी रोड ग्वालियर से आप सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी जी। यह है आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, नाम पूरा टाइप नहीं हुआ पर हमारे जहन में और हमारी जबा पर बैठा हुआ है हमारे श्रोताओं के नाम। फिनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियाश कुमार सोंगा मगर रोड छत्तीसगढ़ से। यह है टाइगर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़े, ध्वनि और इनके साथ है सानवी। छत्तीसगढ़ भिलाई से आप है मुकेश शर्मा, गौरव इनके साथ है गरिमा शर्मा जी। भाटापारा दत्त छत्तीसगढ़ से है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू जी। ये है साधुर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, इनके साथ है चंद्रकला रेवाड़। ये श्रोता है हमारे साथ सुधा मूर्ति के हाली बेंगलोर से। शनि मंदिर चौक खंडवा से आप है दुर्गा प्रसाद सैनी, गौरव सैनी। अगले श्रोता दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष मिगलानी, सुभाष जी। अगले श्रोता ममना जिला हमीरपुर से बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए। मुरादगढ़ से आप है रमेश

कुमार कंबोज वंश और भुवेश कुमार कंबोज जी, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर रतन माला जी, कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए थे। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी। अगले श्रोता नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवनकर निर्मला और विशाल नाहवनकर जी भी जुड़ गए थे। देरापुर भामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। कोरासी छत्तीसगढ़ से पवन क्रांति साहू, पंकज साहू और इनके साथ है सुष्मिता साहू जी। गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन योगेश और युद्ध कड़वासरा जी। कल्याणपुर मुंबई से आप हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। और ये हैं कहां से, छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। अगले श्रोता भाणा ब्राह्मणावाला नरवाणा से मेघराज शर्मा, कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, कदुआपाड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से स्टेशन रोड, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया, विनोद मुन्नत, नेहा मुन्नत, दीपक और मयंक मुन्नत, बोरखेरा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मोहजाहिद पटेल और नदीम पटेल, धाड़ी नादूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण पाठे, संदीप पाठे, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी से जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान, अभिजीत गवनकर राही मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं, संजीव स्वामी सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से, गांव चोहल्दा भागपत से आप हैं संजीव ढींगिया और नमन ढींगिया, नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, अनिल, ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, अनिल नीपत से, अब जगह का नाम हमें भी क्लियर नहीं हो रहा, निपत से पता नहीं, मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू इनके साथ है, राहुल साहू, किशनगंज बिहार से आप है रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और इनके साथ है अनुराग, सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़ जी। छत्तीसगढ़ से है प्रभा, बिहार से डुमराव से राधिका जटोलिया, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया जालंधर से अशोक जाटव, सज्जन जांगड़ा, कार्तिक और विदांश जांगड़ा है नलोई जिला हिसार से, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोई, जगदीश जौहरी, लड्डू कुमारी जी भी जुड़ गई थी इनके साथ। श्रोता है हमारे साथ कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से, भाई इन्होंने लग रहा है दोबारा नाम जोड़ दिए हैं, बस हिमाक्ष नाम नया है, बाकी नाम पुराने हैं जो हम पढ़ चुके हैं। गांव उगाला जिला अम्बाले से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी इनके साथ है राघव अशोक। अगले श्रोता है बिहार स्टेट से डब्लू वली बेलदार, उल्ला वली बेलदार और सोनम बेलदार, गांधी नगर गुजरात से सुरेश राठौड़। अगले श्रोता शास्त्री नगर वीरशहर से किशन सपकाल, आशा और सोनिया और विशाल सपकाल, आरसी कामड़े और करुणा कामड़े जवाहरनगर दुर्ग से जुड़ गए थे। ये श्रोता है कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी शंटे और इनके साथ है लाडी, रेलवे रोड गजनडवारे से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नास और बेबी फातिमा गाजी जी भी जुड़ गए थे। रेलवे ये दोबारा से इन्होंने नाम भेजा हो, ऐसा ना करें भाई, बार बार एक बार नाम भेज दिया बहुत होता है वो। विनोद तोमर, संजू देवी, ममता देवी, ग्राम पंचायत निहर सवार जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हैं। अगले श्रोता यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी भी जुड़ गए थे। ये श्रोता है कहां से, धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार भोपाल राजस्थान से है, ये है रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, उनके साथ है करुणा वर्मा जी, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार से है खंडवा से मोहम्मद रफीक परवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन परवार जी भी जुड़ गए थे। श्रोता कबीर रेडियो श्रोता संघ से है डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय तवरिया और तुषार देव तामोरिया जी। पंचकूला से है आप, कहां से, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और तुलसी मस्कीन जी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आप है चैतन्य मस्किन, मेघा और आशीष राजा। अगले श्रोता हमारे साथ है रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना, गांव धाणी, कुतुबपुर जिला हासी हिसार से। ये श्रोता है गांव बांडीवाला फाजिल का पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, गरिमा बागड़िया जी। ये श्रोता जुड़ गए सरिता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, कुश गौतम, साई विहार रामपुर से, यह कॉल कैथल से अशोक कुमार, पल्लवी भारद्वाज। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए मंगोली जेटान से सीमा कौशिक सरतर सेम कौशिक, वसंत कुमार कौशिक, इनके साथ है लक्ष्य और रुद्र, पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वलीउल्लाह अंसारी, नस्मा बेगम नाज अंसारी जी। अगले श्रोता शंभुदयाल खटक और इनके साथ हैं पूजा खटक जी।
ये हमारे साथ जुड़ गए जाखोद से। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहां से ये हैं हमारे श्रोता? निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, और हमारे साथ मांगीराम सैनी, रवि सैनी, पूनम सैनी, खुशी सैनी जुड़ गए प्रतापगढ़ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। तो बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न का सही उत्तर दिया, उनका दिल से देते हैं धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपका एकम का लुत्फ भी उठा रहे होंगे। और आज का प्रश्न आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और प्रश्न के रूप में जो आपसे आपको गीत सुनवाया गया था, गीत के बोल सुनवाए गए थे, वो गीत आपको पूरा सुनवा रहे हैं।

0: मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलू रे,
1: मैं बन की चिड़िया बन के।

काल काल में बात बात दिन पकड़े कभी न छोड़ू संग संग डोलूं रे। तुम डाल डाल में बात बात दिन

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
6: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
5: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
7: श्रोताओं, आज है PV नरसिम्हा राव की जयंती। हर वर्ष 28 जून को मनाई जाती है। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान राजनेता, विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले PV नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी जाती है। इनका पूरा

में उन्होंने 1991 की आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, लाइसेंस राज से बड़े सुधार किए। भारत को गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और बात करें इनके और अन्य योगदान की, तो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की भी इन्होंने शुरुआत की, इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, पंचायती राज को मजबूत करने वाले संविधान संशोधन किए जो इनके कार्यकाल में लागू भी हुए। लगभग 17 भाषाओं के वे ज्ञाता थे, लेखक, साहित्यकार और अनुवादक थे। हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अनेक भाषाओं में वे दक्ष थे। वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान भी किया गया। तो श्रोताओं, आज हमने आपसे बातचीत की, आपको जानकारी दी हमारे 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती के बारे में।

जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी कैसी भी हो हमें उसको जरूर गले लगाना चाहिए। सुख हो दुख हो, ये तो भाई धूप छांव की तरह है जो निरंतर गति के साथ चल रहे हैं। जैसे रात के बाद दिन आया, दिन के बाद रात आई है, तो गहरी रात हो, अमावस्या की रात हो, तो पूर्णिमा की रात भी जरूर आती है। तो बस इंतजार कीजिए, क्योंकि दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो चलिए हम बात करते हैं, हम आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 में भारत का अब तक का कैसा रहा प्रदर्शन। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है श्रोताओं, और सेमीफाइनल के दौर में अभी भी बना हुआ है। टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर कर रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। क्वालिफायर टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति को मजबूत किया। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर भारत ने सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी तक बरकरार रखी हुई हैं। खेले गए 4 मैचों में से उन्होंने, जो हमारी भारतीय टीम है, उन्होंने 3 जीत हासिल की हैं। इनको 6 अंक प्राप्त हुए हैं। भारत का नेट रेट भी सकारात्मक है, जिसमें सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूत स्थिति में है। भारत का अगला और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। यदि भारत ये मैच जीत जाता है तो सेमीफाइनल पहुंचने की संभावना बहुत मजबूत हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि हम ये जो ट्रॉफी है, ये कप है, जरूर जीतेंगे। और आप बने रहिए इस बात के साथ, क्योंकि हम आपको, आकाशवाणी आपको हर मैच का लाइव सुनाता है, सजीव प्रसारण आपको सुनवाता है, और आप आनंद भी लेते होंगे। तो आशीर्वाद बनाए रखिए अपनी महिला क्रिकेट टीम के ऊपर, क्योंकि फट्टे जग देंगे

श्रोताओं, इस पूरे महीने में घर में जो चहलकदमी रही, हल्ला हो रहा, वो तो आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि एक से डेढ़ महीने की जो छुट्टी, लंबी छुट्टी के बाद अब दोबारा स्कूल जाने का समय आ गया है, कड़े अनुशासन का समय आ गया है। और जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब भाई उन्हें टीवी स्क्रीन से दूर रहना पड़ेगा, माता पिता के लिए दूर रहना पड़ेगा। तो भाई अब जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती हफ्ते आते ही घरों में अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने वाले होते हैं। इस दौरान बच्चों के भीतर एक अनजाना सा डर, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी, जो स्कूल वापस जाने की एंजाइटी होती है, वो पनपने लग जाती है। इस तनाव को एक बड़ी वजह छुट्टियों में बिगड़ा हुआ शेड्यूल यानी रूटीन, अनियंत्रित स्क्रीन टाइम भी होता है। छुट्टियों में बिगड़ चुके रूटीन के बाद बच्चों को मानसिक रूप से स्कूल के लिए तैयार करने के लिए इस बदलाव को डांट डपट के बजाय धैर्य और समझदारी से बना सकते हैं आप आसान। भाई जब स्क्रीन टाइम सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, हर उम्र के लोगों पर एक जैसा असर करता है, यह हमें आसपास के वातावरण से काट देता है। जब बच्चे स्क्रीन की आभासी दुनिया में खोए रहते हैं और अचानक उनसे ये गैजेट्स वापस लिए जाते हैं, तो पढ़ाई की बात की जाती है तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और चिड़चिड़ापन असल में सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है। जब आप बच्चे को दोबारा अनुशासित दिनचर्या की तरफ ले जाएंगे तो वो दोबारा से वो सेट हो जाएगा उसका माइंड। अक्सर पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि बच्चा गैजेट ना मिलने के कारण नाटक कर रहा है या सचमुच स्कूल के कारण किसी बात से घबराया हुआ है। बच्चे के नखरों को नकारात्मक रूप से दिखने के बजाय उसे सकारात्मक रूप से समझने की कोशिश करें। उनके साथ, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें। नखरे असल में बच्चे का यह कहने का तरीका है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, यह मुझे रूटीन पसंद नहीं है। यह बच्चा गुस्सा दिखाए तो पेरेंट्स को थोड़ा पीछे हटकर उसकी मनस्थिति को समझना चाहिए और बातचीत का नया दौर उसके साथ निभाना चाहिए। और श्रोताओं, कुछ बच्चे नई क्लास में जाने या पेरेंट्स से दूर हो जाने के रूप में भी गंभीर रूप से अशांत हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और यदि संभव हो तो स्कूल प्रशासन से बात करके बच्चे को पहले दिन कुछ पूरे समय के बजाय स्कूल में आप हाफ डे के लिए ले जा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा उसको कम शुरुआती दौर में ही, अब जैसे 2-3 दिन की बात रह गई है, तो आप अभी से उसको थोड़ा थोड़ा सा कम करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। छुट्टियों में जो देर से सोने और देर से जागने की आदत होती है वो अचानक से नहीं बदलती, सबसे मुश्किल यही स्थिति होती है। इसे रातों रात बदलने की कोशिश करेंगे तो घर में झगड़े होंगे और बच्चा एकदम से अव्यवस्थित हो जाएगा। तो सबसे पहले नोट करें कि बच्चा फिलहाल किस समय उठ रहा है और सो रहा है, तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें। अब हर रात सोने के समय में 15 से 20 मिनट पहले करते हुए उसे आगे की तरफ खिसकाना शुरू कर दें। शरीर को नए रूटीन ढलने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है, पर अब तो 2-3 दिन रह गए हैं, तो उन्हें धीरे धीरे से कोशिश करना शुरू कर दिए। सोने के समय के साथ साथ अंतिम हफ्ते में दिन के समय कम से कम 1 घंटा लिखने, पढ़ने या सोचने वाली दिमागी कसरतों के लिए तय करें, ताकि स्कूल का एकेडमिक प्रेशर उस पर अचानक से हावी ना हो। तो

के लिए आप उसको धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पढ़ने, इंटरेस्टिंग वे से, प्ले वे मेथड से उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। यदि स्कूल खुलने में दो हफ्तों के बाद ये बच्चे का चिड़चिड़ा, गुस्सा या बहुत ज्यादा रोना पीटना रहता है तो खुद को एक ही चक्र में फंसा हुआ महसूस करता है। तो इसमें हम अभिभावकों की साथ ही साथ स्कूल की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। गुरुजनों की, टीचर्स की, शिक्षकों की, एजुकेटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे को स्कूल में ये नहीं जाते ही आप उसके टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, जाते ही आपके ये भाई आपने हॉलीडेज होमवर्क क्यों नहीं किया उसके ऊपर प्रेशर ना बनाए। एक दो दिन का उसे समय दीजिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए उसका स्कूल में मन लगाने की, क्लास में नई नई एक्टिविटीज करवाने की। अगर ऐसे ही पेरेंट्स घर में जब बच्चा आता है तो उसके ऊपर ये प्रेशर ना डालें, आपने स्कूल में क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, आपने पढ़ा क्यों नहीं, आपके नंबर क्यों नहीं आए, मतलब इस तरह के प्रेशर बच्चे को बिल्कुल भी ना दें कि वो अगले दिन स्कूल जाने से कतराने लगे। स्कूल को जो माहौल है बहुत ही प्यारा सा बना के रखिए, खुशनुमा बनाइए और घर का माहौल भी। कोशिश कीजिए धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव लाने की, सबसे पहले उससे बातचीत कीजिए क्योंकि ये अहम मुद्दा होता है। कई बार एक छोटी सी बात से घर का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, खराब हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से अपने बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज डालने की, और कोशिश कीजिए अभी से उसके दिमाग को इस बात के लिए सेट करने की कि भाई बेटा बहुत दिन हो गए, अब आपको स्कूल जाना है और पढ़ाई के बिना इस जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसको उसकी मंजिल के लिए अवेयर करें और उसको तन की शक्ति भी दें और मन की शक्ति भी दें।

श्रोताओं, आज हमने बहुत सारी बात करी, तो चलते चलते आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बिजली सुरक्षा दिवस भी है। लोगों को आकाशीय बिजली से बचाव करने के प्रति जागरूकता करने का आज का दिन होता है। साथ ही बीमा जागरूकता दिवस इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है, जिसमें जीवन स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा के महत्व को समझाने के लिए आज का दिन बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी पेयर्सिंग दिवस भी है। बॉडी पेयर्सिंग संस्कृति और सुरक्षित प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही इंटरनेशनल कैप्स लॉक डे यानी इंटरनेट संस्कृति से जुड़ा एक मजेदार दिवस भी आज है, और नेशनल डे यानी कि टाउ डे भी है। गणित के प्रसिद्ध स्थिरांक टाउ यानी 2π को समर्पित है आज का दिन। तो बहुत कुछ आज मनाया जा रहा है, और सबसे मुख्य बात, हम संडे मना रहे हैं और संडे में अपने अपनों के साथ बैठते हैं, ढेर सारी गपशप करते हैं, दुख सुख बांटते हैं, अपनी दिनचर्या को बांटते हैं। और ऐसे में आप अपने अपनों के साथ बैठिए और खूब सारी बातचीत कीजिए, एंजॉय कीजिए आज के दिन को, इसी आशा के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएंगे। शिकायतें, सुझाव हो या प्रशंसा, बस हमारे मेल आईडी पर प्रेषित कर दीजिए। कार्यक्रम आपकी बात में हर मंगलवार शाम 7:30 पर, कार्यक्रम आपकी बात akashvani@gmail.com पर। अब अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी को कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की अनुमति दीजिए।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मिलन इंगले के स्वर में।

0: नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।

श्रोतों, कार्यक्रम स्वरांजलि का अगला गीत हरभजन मान के स्वर में। श्रोतों, संडे के मुताबिक आपको सुनवारे प्यारे से रोमांटिक और प्यारे से पंजाबी गीत। आनंद लीजिए।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
3: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
2: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
3: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

श्रोताओं, सरदूल सिकंदर के गायक गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि यही संपन्न होता है। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। प्रातः 10 बजे जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से। कार्यक्रम शक्ति मंच के लिए राजेश चांगड़ा के साथ आज है सजीव फोन इन कार्यक्रम। तो हमारी महिला श्रोता मिलाइएगा 2213220744 लगाकर। इंतजार कीजिए प्रातः 10 बजे का कार्यक्रम शक्ति मंच के लिए राजेश चांगड़ा के साथ। विविध भारती के कार्यक्रम का रिले का इंतजार कीजिए।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

दयाल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं, जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल

राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच।

कार्यक्रम शक्तिमान सुनने वाली सारी बहना ने राजेश बहन की राम राम। बहनों आज महीने का आखिरी रविवार है और सारी बहन बाट देख रही होंगी कि अभी कद सी फोन मिलाऊं और कद हम बात करें और अपनी पसंद के गीत सुना। और बहनों साथ में आप जो बातचीत कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप तैयारी होंगे ना, क्योंकि हर बार हम कोई ना कोई विषय लेकर वहाँ। तो इस बार बहनों पहला विषय रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा विषय है बहनों हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यानी ये क्यों मनाया जा है, तो इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ कि गर्मी का मौसम है तो इसे मौसम में आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो ना। तो बहनों देखो ना, तड़के 7 बजे कितनी करारी धूप निकल आवे और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। बात सही है ना, क्योंकि इसे मौसम में चाहे जाड़ा है या गर्मी है, जब भी मौसम बदले तो इस मौसम में बहनों उसका जो असर है वो आपके स्वास्थ्य पर जरूर पड़े है। तो इसे मौसम में थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, थोड़ा पानी पीते रहें और ठंडी जो चीज़ें हैं वो खाते रहें, और छाया में ज़्यादातर आप मतलब छाया में रहें, घर के अंदर ही रहें ताकि बाहर आपको जाना आना ना पड़े, ताकि सीधी धूप जो है वो ना लगे, और जिस कारण से आपका जो शरीर है उसका जो तापमान है वो मतलब बढ़ जाए यानी गर्म हो जाए। तो सिर न ढक कर रखें हमेशा, और जो पूरी बाजू के आपके कपड़े हैं और हो सके तो सूती कपड़े पहनें, ताकि जो धूप है उसका असर एकदम तो आपके शरीर के ऊपर ना पड़े। बड़ो ये बात भी ज़रूरी थी ना क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी हो जाएं कि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। और कई बार देखो आप किचन में खाना बनाने लग रहे हो, जब भी 2-2 घंटे लग जाएं तो वो भी गर्मी है, तो एकदम तो आप क्या करो फ्रिज का ठंडा पानी पी लो, उससे क्या होगा, अब जो तापमान बढ़ रहा है ना शरीर का और ठंडा पानी पी लिया तो क्या होगा, शरीर जाम हो गया, फिर आप कहोगे गर्म सर्द हो गया, खांसी जुकाम हो गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि काम करते आना भी थोड़ा नॉर्मल पानी हो वो आप पी, मतलब ज़्यादा अच्छा या घड़े का पानी है वो पी लें, क्योंकि उससे तीस भी बुझेगी और आपका शरीर का जो तापमान है भाणो वो भी ठीक बना रहेगा। और ये थोड़ी सी चर्चा कर लें भाणो हम जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, यानी भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून यानी कल ने जो 29 तारीख है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा है भाणो। यह दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा है, यानी इनको इसका जनक माना जा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य है भणो यानी जागरूकता को फैलाना, सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जन को जागरूक करना यानी उनमें जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा भणो राष्ट्रीय विकास और सर्वेक्षण में सांख्यिकी विज्ञान के अनुप्रयोग में प्रोफेसर महलनोबिस के अमूल्य योगदान को सम्मानित करना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अलावा विश्व स्तर पर बनो एक अलग दिवस मनाया जा है, विश्व सांख्यिकी दिवस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कराया गया है जो प्रत्येक 5 साल में एक बार 20 अक्टूबर में मनाया जा है। इसका उद्देश्य भी आधिकारिक सांख्यिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाना। बनो देखो हम अपने बालका ने पढ़ावा हाँ, लेकिन बालका का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा सा कुछ हट कर सिखावा, यानी आप कितने भी मुश्किल देख रहे हो कि हिसाब किताब करना पढ़ना विज्ञान में आप उन्हें सोचो कि अच्छे वो बन जा, लेकिन बालक का मन नहीं लगता, तो उसमें क्या है भनो आप थोड़ा सा अगर उसने हंसी खुशी में एक गीत की तरह उसने कहानी की तरह आप अपने बच्चे ने सिखावा, और इसी तरह स्कूल में भी अब कह दें ना कि छोटे छोटे बालका ने ABC सिखानी है, उनते गिनती सिखानी है, तो वो बालक नाचेंगे कूदेंगे एक एक ने दो दो ने इकट्ठा करके जब बतावें सिखावें तो बड़े कुछ इस तरियाँ इस गीत में, और उसके बाद फिर हम की करा घर जब बालक आ जाए ना वो घर आके भी इसे बात ने नहीं गाता रहेगा और पहाड़े भी सीख जाए गिनती सीख जाए, और इसी तरियाँ जो आपके आगे फिर विज्ञान में है वो बच्चा रुचि लेने लग जाए। तो पहले सुनते हैं ये गीत फिर भाणों से करते हैं बातचीत।

0: गुण
1: हम
2: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
3: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
2: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
3: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
3: 8708903436।
4: जब जीरो दिया मेरे भारत।
5: तो भानो, हम जिस तरह चर्चा कर रहे थे कि विश्व सांख्यिकी दिवस यानी इसके ऊपर तो 20 अक्टूबर में भाड़ा ये मनाया जाता था, लेकिन भारत में जिस तरह हम 29 जून ने इसने मनाने लग रहे हैं, तो यह दिन भाड़ो नीतियों, निर्णय लेने और समाज को आगे बढ़ाने में सांख्यिकी के महत्व को यानी उसकी पहचान हमें करवाता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने विश्वसनीय और सटीक सांख्यिकी डाटा के महत्व को उजागर करने के लिए 2010 में भाड़ो इसकी शुरुआत करी थी। और इसी तरह सांख्यिकी का भाड़ जो उपयोग है, अनुसंधान करने, परिणामों का मूल्यांकन करने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और आंकड़ों के समूह के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी का उपयोग लगभग किसी भी अध्ययन क्षेत्र में यह जानने के लिए किया जा है कि घटनाएं क्यों घटित होती हैं, कब घटित होती हैं और क्या उनकी पुनरावृत्ति पूर्वानुमानित है। यानी अगर कोई घटना घट रही है, जिस तरह आजकल मौसम बदल रहा है, आप देख रहे हैं ना कि बादल फटने की घटना कितनी हम देखा, या फिर पहाड़ों पर जो नदियां हैं किस तरह पहाड़ टूटने लग रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तो हर चीज़ के बारे में जानकारी हमने मिलने लग रही है कि किस तरह पहले में हमने बेरा पड़ जाए है। पहले तो क्यों आया करता है कि जब घटना घटले है जब उसके बारे में बेरा पड़ता कि भी आज तक नहीं होली, लेकिन ये हमने की है कि कई घंटे पहले या कई दिन पहले ही बेरा पड़ जाए कि अगले दिन कुछ होने वाला है। ये बरसात है, हम पहले देख लें कि भी 4-5 दिन बाद इतनी तारीख ना इतनी बरसात होगी या मौसम खराब होगा, तो उससे हमने क्या फ़ायदा है कि अगर आपने कितने जाना भी है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके कि हमने किस टाइम जाना चाहिए, ताकि खराब मौसम में आप अगर अपने वाहन से जा रहे हैं या किसी दूसरे साधन से भी जा रहे हो तो रास्ते में आपने कोई दिक्कत ना हो, तो ये जानकारी आपने पहले मिल जाए जिससे आपने थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और इसी तरह अगर आप मान लो रास्ते में जा चुके हैं और आपने थोड़ी जानकारी ये मिल जाए कि 2-4 घंटे बाद मौसम ख़राब होगा या आगे रास्ता सही नहीं है, तो आप उड़े तो ही अपना या तो वापस आ रहे हैं या फिर वहीं कोई आप अपना ठिकाना ऐसा ढूंढ लें कि आपने सुरक्षा महसूस हो, तो ये सारी जानकारी हमने मिलती रहे हैं। तो इस करके मतलब इसका हम सोचें कि कितना फ़ायदा है। और मानो सांख्यिकी के मूल सिद्धांतों में केंद्रित प्रवृत्ति और प्रकीर्ण का मापन शामिल है, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माध्यम माध्यमिका और बहुलक शामिल है, जबकि प्रकीर्ण में विचरण और मानक विचलन शामिल है। माध्यक्ष पर्यवेक्षणों का औसत होता है, माध्यमिक पर्यवेक्षणों को क्रम से व्यवस्थित करने का प्राप्त केंद्रीय मान होता है। तो भानो हमारे देश में ये सारी चीज़ें पहले यानी देश ने जो कुछ भी कराया उसके बारे में जो विदेशों में होया सबसे पहले हम वो अपना ये देखा करते कि भारत में क्यों होया। इफ जीरो की हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत उसकी कितने हुई वो भी आप देख लो।

0: जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: आज तो ऐसा लागे है कि जनों सारी बाण छुट्टी मनान जा रही हूँ, तो वे किसे का तो फोन आ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, दिखता रहा मैंने, एक जनी कोई बोलता रही है। हेलो
3: हेलो
2: हेलो, कौन सी सखी जुड़ी है?
3: जी।
2: नमस्कार, कौन सी सखी जुड़ी है?
3: मैं सुनीता राणा बोल रही हूँ।
2: कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो छुट्टियों में आप नहीं गए कहीं?
3: नहीं, बस जा नहीं पाए। मैं छुट्टियों में तो गई नहीं हूँ, लेकिन अब जाने का इरादा है। आषाढ़ में जो गाँव में ना माता वगैरह दुखते हैं, तो
2: ठीक ठीक
3: माता दुखन वास्ते
2: कुछ तो मौसम ही ऐसा ना, इतनी गर्मी में कहीं बाहर भी नहीं जाया जाता,
3: जाने का मन नहीं होता।
2: अच्छा, तो आज हम एक चर्चा कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी, तो उसके उसपे हम थोड़ी सी आपसे भी बात करना चाहेंगे कि ऐसा आप सही लगता है आपको कि

0: बेटियों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उनको परवरिश करनी चाहिए?
1: हाँ जी, वैसे ये मुहिम तो बहुत अच्छी है और हमारे टाइम के हिसाब से अब जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो बहुत अच्छा है। बेटियों को बचाना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन आजकल का माहौल ना राजेश जी देखते हुए जैसे बेटियां मतलब अपनी पढ़ाई का भी कुछ ज्यादा गलत फायदे उठा रही हैं, ये भी एक समस्या है, चर्चा का विषय है, ये भी एक, इस पे भी चर्चा करने की बहुत जरूरत है।
0: लेकिन
1: और
0: देखिए, क्योंकि अब पीछे क्या था कि जैसे लड़कों की संख्या ज्यादा थी, लड़कियां कम थी, तो लिंगानुपात बढ़ाने के लिए ये सब किया गया था कि भी बेटियां भी कम ना रहें और
1: हाँ जी
0: बेटों के मुकाबले बेटियों का भी जन्म हो, उनको भी वो
1: हाँ जी
0: सुविधाएं मिलें, उनको भी वो माहौल दिया जाए
1: हाँ
0: ताकि
1: जी
0: बेटियां पढ़ लिख कर अच्छे
1: बेटियां
0: काम
1: भी
0: करें।
1: आगे बढ़े, पुरुषों
0: बिल्कुल
1: के कंधे से कंधा मिलाकर
0: बिल्कुल
1: चले।
0: सही बात है, क्योंकि जब हमारा समय था तो उस टाइम यही होता था कि चलो दो चार पढ़ लिए ठीक है, घर का ही काम तो करना है। लेकिन
1: हाँ जी
0: आजकल
1: हाँ,
0: हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लड़कियों को मौका मिल रहा है सब कुछ करने के
1: मौका
0: लिए।
1: मिल रहा है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमा रही हैं
0: बिल्कुल,
1: लड़कियां।
0: तो माँ बाप को भी यही था कि इस बहाने उनको ये ना लगे कि बेटियां हम पे बोझ हैं, तो
1: हाँ
0: उनके
1: जी
0: पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी और ये भी जब सरकार की तरफ से मिल रहा है तो क्यों ना बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले ताकि वो भी आपका नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, और देश की तरक्की में अपना योगदान दें।
1: योगदान दें और अपने अपने विचारों को, अपनी परवरिश को मतलब
0: बिल्कुल, आपका कहने का
1: ठीक रख।
0: मतलब है कि अब अगर पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो ऐसे लोगों में बैठे उठेंगे, उनको अच्छी जानकारी मिलेंगी, अच्छा उनका
1: हाँ
0: ज्ञान बढ़ेगा ताकि वो दूसरों को भी मतलब प्रेरित कर सकें।
1: हाँ जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही बात है। तो बेटियों के लिए कोई गीत नहीं आप सुनना चाहेंगे?
1: हम जी बेटियों के लिए है, मेरी एक नन्ही सी परी है, दोहती दोहती है,
0: अच्छा
1: उसके लिए सुनना चाहती हूँ मैं,
0: हाँ, जब वो
1: वो
0: मतलब
1: कई
0: गुस्से,
1: बार
0: अच्छा
1: उठ जाती है।
0: गुस्से में बैठी हुई है, अरे
1: हाँ
0: वाह,
1: जी, तो उसके लिए मैं सुनना चाहती हूँ, गुड़िया कब तक ना हंसोगी।
0: हाँ क्या बात है क्या बात है, उसको मनाने के लिए क्या क्या गीत ढूंढा आपने। चलिए आपकी पसंद पे आपके लिए ये गीत।
1: आप सभी आकाशवाणी की
0: तो कॉल करने के लिए आपका भी धन्यवाद।

तो भानो, जिस तरह हम सब जाना है कि भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 1915 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय सामाजिक अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में बालिकाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो ये अभियान शुरू कराया गया था भानो, ये पानीपत से शुरू कराया गया था ना हरियाणा के, तो ये बात हम सब जाना है। तो जो गिरते हुए बाल लिंगानुपात था भानो, उसको रोकना और लड़कियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि वे समाज और देश के विकास में समान रूप से योगदान दे सकें। और शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना, यानी सशक्तिकरण उनको देना कि वो किस तरह से मजबूत बन सकें। और भेदभाव को भानो खत्म करना, जैसे समाज में बेटियों के जन्म को बोझ मानने की रूढ़िवादी सोच को बदलना और उन्हें बेटों के समान दर्जा देना। तो भानो यही मकसद था इस को चालू करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू करी गई थी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम शक्ति मंच राजेश चांगड़ा के साथ FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।

0: बाल सभा सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को, प्यारे प्यारे बच्चों को और स्टूडियो में आए भी नन्हे मुन्ने कलाकारों का हम स्वागत करते हैं और हमारा प्यार भरा नमस्कार उन्हें करते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि कार्यक्रम बाल सभा में आने वाले सप्ताह में जो खास दिन होते हैं उनकी चर्चा हम जरूर करते हैं। तो आज भी सबसे पहले उसी दिन की चर्चा कर लेते हैं। आपको पता ही है 27 जून को हेलन केलर की जयंती है और हेलन केलर जो थी कला स्नातक की उपाधि ग्रहण करने वाली सबसे पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला थी। जी हाँ, वो बधिर और दृष्टिहीन महिला थी, फिर भी उन्होंने कला स्नातक की उपाधि अर्जित की और उनकी गुरु का नाम था एनी सुलेवन। अब आप बताइए कि कितना मुश्किल है ना कि आप सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, उसके बावजूद भी आप इतना सब कुछ दुनिया में करते हैं कि आप एक लेखिका बन जाते हैं, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आप अपने इशारों से कुछ इस तरह से बातें लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग आपकी बात का सम्मान करते हैं। और हेलन केलर जो थी उन्होंने महिलाओं के लिए उनका स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत काम किया और वो एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी और आचार्य भी थी। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि आपको कोई भी शारीरिक कमी हो, अगर आपके अंदर कोई भी शारीरिक कमी है तो वो आपके रास्ते की बाधा कभी नहीं बन सकती। आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं, जितना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आपके रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती, बस जरूरत है तो दृढ़ निश्चय की। हेलन केलर के बारे में अगर हम और बातें आपसे बताएं तो ये नहीं था कि वो बचपन से ही ऐसी थी, जब वो पैदा हुई थी तो वो ठीक थी, लेकिन कुछ महीनों की जब वो थी तो उन्हें एक ज्वर, जिसको कहते हैं बुखार, हम आम भाषा में कह देते हैं, एक बुखार आया जिससे उनकी दृष्टि भी चली गई और वो सुन भी नहीं पाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खूब मेहनत की और वो आगे बढ़ी और प्रसिद्ध लेखिका भी बनी। तो अब हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं आपसे, क्योंकि हमें पता है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको मौका मिले, कब शशि दीदी चुप हों, कब आपको अच्छा सा मौका मिले और आप जो रचना अपने साथ लेकर आए हैं वो हमें सुनाएं। तो हम आपका इंतज़ार समाप्त करते हैं, चलिए चलते हैं ये पहले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
1: मेरा नाम अनन्या है। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है पेड़ बचाओ। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मन मेरा भी रोता है, मैं तो सखा तुम्हारा हूँ, मित्र सबसे न्यारा हूँ, फल मैं खुद नहीं खाता, सब तुम्हें ही दे जाता, जहरीली गैसें पी जाता, शुद्ध हवा तुम तक पहुंचाता, झूम झूम के जब लहराऊं, मानसून के बादल लाऊं, धरती का श्रृंगार करूं, सूरज का सब ताप हरूं, जीवन का मैं हूं आधार, फिर भी तुम मुझ पर करते प्रहार, सुनो बात तुम देकर कान, वृक्षों का करना सम्मान, रखवाली हरियाली की चाबी है खुशहाली की। धन्यवाद।
0: अरे बहुत ही सुंदर सी ये रचना इस बच्चे ने हमें सुनाई। और अब चलते हैं अगले नन्हे कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
2: मैं दक्ष सोहिला हूँ और मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। सी सॉक अप एंड डाउन, विशेष कर ले तू अंदर डाउन, वन फुट करते वन फुट डाउन, दाती दीवे तू अंदर डाउन, वन फुट करते वन फुट डाउन, दाती दीवे तू अंदर डाउन। A for apple, down down C, red red apple, so good to eat. तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, बागों में मैं रहता हूँ।

0: भी मैं खाता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ।
1: छोटे नन्हे नन्हे शब्दों में नन्ही सी बच्ची ने ये हमें कविता सुनाई, बहुत ही अच्छी कविता थी। चलते हैं इस प्यारी सी बच्ची की तरफ, क्या नाम है इसका?
0: मेरा नाम श्रुति है, मैं चौथी क्लास में पढ़ती हूँ। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को लिए चलते हैं एक पायदान और ऊपर।
2: मैं आज आपको श्री कृष्ण जी का एक भजन सुनाने वाली हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, श्री कृष्ण जी का भजन सुनाएंगी, तो सुनाइए, स्वागत है आपका।

0: भाई बहुत ही प्यारा भजन रिया आपने सुनाया और पूरा वातावरण ऐसे भक्तिमय और संगीतमय कर दिया आपने, हमें बहुत अच्छा लगा आपका भजन और उम्मीद करते हैं कि सुनने वाले श्रोताओं को भी उतना ही पसंद आया होगा। चलते हैं इस प्यारी सी बच्ची की तरफ, क्या नाम है इसका?
1: छाया।
0: छाया भाई बड़ा ही प्यारा नाम, नाम में ही कितनी शांति है, ऐसा लग रहा है नाम ही आपका छायादार वृक्ष की तरह है और ठंडी ठंडी छाया दे रहा है। चलिए आप बताइए हमें क्या सुनाएंगी आज?
1: मैं स्वच्छता अभियान के ऊपर एक
0: स्वच्छता अभियान के ऊपर एक कविता सुनाएंगी, तो स्वागत है आपकी कविता का, सुनाइए।
1: मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, सदा ही करते तू तू मैं, करो कभी कोई अच्छा काम, बढ़ाए जो भारत देश का नाम, देश के द्रोहर पर है सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार, नहीं है कोई बहुत बड़ा उपकार, बस करना है जीवन में बदलाव, शहर को मानकर घर अपना, निर्मल स्वच्छ है उसे भी रखना, कूड़े दान में फेंको पूरा, हर जगह ना फेंको पूरा, थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया, ना करो किसी पड़ोसी का इंतजार, देश है सबका, बढ़ाओ स्वच्छता अभियान।
0: बहुत ही प्यारी कविता आपने हमें छाया सुनाई और बहुत ही मजा आया हमें सुनकर कि भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। हम अपने हर कार्यक्रम में बच्चों को, सुनने वाले श्रोताओं को, सबको ये संदेश देते हैं कि भारतवर्ष को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है और जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा, प्रगति की तरफ अग्रसर नहीं होगा। तो आप सब इस बात से सहमत हैं?
2: जी।
0: बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, सहमत हैं और इस चीज को आप पालन भी इस चीज का करते हैं?
2: जी।
0: आप अपना घर साफ रखते हैं?
2: जी दीदी।
0: पर आप कैसे साफ रखते घर, तो आपकी मम्मी साफ रखती होंगी, क्यों, ठीक बात है ना?
2: जी दीदी।
0: तो आप भी अपना स्वच्छता में सहयोग दीजिए, मम्मी पापा को मदद कीजिए घर साफ रखने में। इसी तरह से जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल को साफ रखने में आप मदद कर सकते हैं। तो आप जो बहुत बड़ा एक अभियान श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने छेड़ा है, उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं और उसमें भागीदार भी बन सकते हैं। तो आज से आप अपने आप से वादा कीजिए, आपको मुझसे वादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप से वादा कीजिए कि हम अपने देश को, अपने आसपास को, भारतवर्ष को, सबको स्वच्छ रखने में अपना थोड़ा सा सहयोग जरूर देंगे, स्वयं साफ रहकर और चारों तरफ सफाई रखकर। करेंगे ऐसा?
2: जी दीदी।
0: अभी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और प्यारी प्यारी आवाज में जब ये जी दीदी बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलते हैं अगली बच्ची की तरफ, क्या नाम है इसका?
3: भव्या।
0: भव्य से महल से निकलकर भव्या आ गई है हमारे आकाशवाणी में, क्या सुनाएंगी?
3: आजादी के बेटों के बारे में कविता।
0: कविता सुनाएंगी, स्वागत है, सुनाइए।
3: जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कह के फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी

0: हवन कुंड लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंग इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक भोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा के खातिर जीवन भर गा सकती हूँ, मैं सूरज की बेटी तब के गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ।
1: बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता आपने हमें सुनाई, और कितनी सही बात की कि जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हें भूलने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि हम ऐसे आज़ादी के मतवालों को भूल जाएं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और आज भी देश की रक्षा हेतु वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हिमालय के पास खड़े होकर जहाँ इतनी सर्दी है। आप सबको ठंड लगती है?
2: जी दीदी।
1: तो आप रजाई में दुबक कर बैठ जाते हैं?
2: जी दीदी।
1: लेकिन भारत माँ के वो लाल हमेशा इतनी सर्दी में हिमालय के पास खड़े होकर, इतनी ठंड में बर्फीली जगहों पर खड़े होकर हमेशा पहरेदारी करते हैं हमारे भारतवर्ष की, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण ना कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को लिए चलते हैं एक पायदान और ऊपर। क्या नाम है इस बच्ची का?
3: दृष्टि।
1: दृष्टि क्या सुनाएंगी आज हमें?
3: पेड़ लगाने के बारे में।
1: पेड़ लगाने पर एक कविता सुनाएंगी, सुनाइए, स्वागत है।
3: धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं, धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है, पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे, आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाए हम, आओ पेड़ लगाए हम।
1: बहुत ही प्यारी कविता हमें दृष्टि ने सुनाई कि पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जब तक नहीं लगाएंगे तब तक धरती स्वच्छ नहीं हो पाएगी, स्वच्छ नहीं हो पाएगी तो वातावरण भी स्वच्छ नहीं रहेगा। तो वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। सब बच्चे लगाने में अपना सहयोग देंगे?
2: जी दीदी।
1: बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, हर काम के लिए जी दीदी झट से कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
4: मानसी।
1: मानसी क्या सुनाएंगी हमें?
4: Let us be the golden bird.
1: Let us be the golden bird. English कविता, हाँ, स्वागत है।
4: Let us rip the darkness. Let us step in shine. Let us depart the night and let us bring new dawn. Let us eliminate every house. Let us remove despair. Let us communicate hopes and wipe out everyone's stare. Let us remove discriminations. Let us shoot the situations. Let us cut the trap of corruption. Let us kill the suppression. Let us rise above the races. Let us love all the human faces. Let us defeat the terrorism. Let us eliminate the humanism.
1: बहुत ही अच्छी आपकी कविता थी, जिसका मर्म सिर्फ इतना है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमे, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तो बहुत ही अच्छी आपकी कविता। चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
5: वेदिका।
1: वेदिका क्या सुनाएंगी हमें?
5: पेड़ लगाने और प्रदूषण मिटाने के बारे में।
1: चलिए बताइए जल्दी से।
5: एक दिन मैं हो रहा था बोर, तभी सुनाई दिया एक शोर, मैंने देखा खिड़की की ओर, दिखाई दी किसी की छाया, मुझे लगा कोई चोर आया, मैं गया उसकी ओर, उसे हाथों से पकड़ा, रस्सी से जकड़ा, मैंने पूछा कौन हो तुम, उसने कहा मृत्यु हूँ मैं, मृत्यु हूँ मैं, लेने तुमको आया हूँ, पेड़ का

0: हटकर प्रदूषण फैलाकर तुमने मुझे जगाया है। तुमने किया जंगलों को साफ, मैं नहीं करूँगा तुमको माफ। उसने तलवार मारी एक ओर से, आंखें खुल गई चारों ओर से। लेकिन मैं उठा, देखा ये सब सपना था, लेकिन इसमें कुछ अपना था। इसमें कुछ सच्चाई थी, पेड़ लगाने और प्रदूषण मिटाने की। अब मेरी बारी आई थी।
1: बहुत ही अच्छी कविता, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बच्ची ने हमें सुनाई। कविता भी थी और इसमें कहानी भी सिमटी हुई थी। बहुत ही अच्छी इन्होंने बात बताई कि वातावरण प्रदूषित हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग देना चाहिए। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
2: आदित्य।
1: क्या सुनाएंगे आदित्य?
2: चुटकुले।
1: चुटकुले सुनाएंगे। भाई इसकी जरूरत भी थी, हम सोच रहे थे कि कविताएं ही सुनाते जा रहे हैं, ये बच्चे कोई चुटकुले नहीं लेकर आया क्या आज? तो गुदगुदाइए, हंसाइए सबको अपने चुटकुले सुनाकर, सुनाइए जल्दी से।
2: अध्यापक ने चार पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया, विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने तीन पृष्ठ छोड़कर चौथे पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है।
1: क्या बात है भाई, एक बार तालियां बजाइए। बहुत ही अच्छा चुटकुला, यही आलस्य है, क्या बात है। अगला चुटकुला।
2: अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर मैं कल सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है पिंटू तुम क्यों नहीं आए? चिंटू, पिंटू मैं कल पिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सपनों में ही बच्चे यही हरकतें करते हैं, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई उसको एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे सुनाइए।
2: टीचर, न्यूटन के नियम बताओ। स्टूडेंट, सर पूरी लाइन तो याद नहीं है, लास्ट लाइन याद है। टीचर, चलो लास्ट का ही सुनाओ। स्टूडेंट, और इसे न्यूटन का नियम कहते हैं।
1: भाई तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे चुटकुले आप लेकर आए आदित्य। और हंस के हम भी थोड़ा सा तरोताजा सा महसूस कर रहे हैं, क्यों? सभी बच्चे कर रहे हैं ना
3: जी।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य की, इतने अच्छे अच्छे चुटकुले आपने हमें सुनाए। पर अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
4: पार्थ।
1: पार्थ क्या सुनाएंगे?
4: एक कविता।
1: कविता सुनाएंगे, सुनाइए, स्वागत है।
4: दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल पांच गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर उंगली न उठाएंगे, दुर्योधन है भी न कर सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक ही मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अभसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल नहीं पहचाना, तो लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का बलदाई होगा, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अगाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे, कर जोर करे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: भाई बहुत ही अच्छी कविता आपने हमें सुनाई, आपने तो छोटी सी कविता में पूरा संदेश समेट दिया। भगवान कृष्ण, जैसा कि अभी हमें पार्थ ने इतनी सुंदर कविता सुनाई, उसमें भी श्री कृष्ण के संदेश के कुछ अंश छिपे थे, और इसी तरह से श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया अर्जुन को, उसे हमने कितने अध्याय हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्यायों में इसका समावेश किया है, जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। अब तो पश्चिम में भी श्रीमद् भगवद गीता को बहुत मान्यता दी जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता में सार्थक जीवन जीने की कला छिपी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें सारे जीवन का सार छिपा है। तो अब बढ़ते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
5: लावण्या।
1: लावण्या क्या सुना?

0: लावण्या,
1: स्वच्छ भारत का इरादा पर कविता।
0: स्वच्छ भारत का इरादा, आज तो लगता है बच्चे सारे स्वच्छ भारत का इरादा करके ही आए हैं। चलिए सुनाइए।
1: कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने, ये वादा कर लिया हमने। जय हिंद।
0: छोटे छोटे नन्हे नन्हे शब्दों में नन्ही सी बच्ची ने ये हमें कविता सुनाई, बहुत ही अच्छी कविता थी। चलते हैं जल्दी से अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है इसका?
2: चित्राक्षा।
0: चित्राक्षा क्या सुनाएंगी हमें?
2: कोशिश करने पर एक कविता।
0: सुनाइए सुनाइए।
2: कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा।
0: बहुत ही प्यारी कविता कि कोशिश कर हल निकलेगा, हर काम जो हमें आरंभ में मुश्किल लगता है उसका हल कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करने की, और कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए, कभी भी हमें अपनी कोशिश को रोकना नहीं चाहिए। अब चलते हैं अगले नन्हे मुन्ने कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
3: खेवन सरबटे।
0: खेवन सरबटे, तो आज क्या सुनाएंगे आप? कविता सुनाएंगे?
3: जी दी दी।
0: सुनाइए, शाबाश, सुनाइए।
3: भारत माता की जय, आतंकवाद से मुक्ति पाओ, भारतवासी एक हो जाओ, बम फटते कहीं गोला गिरता, है रे मेरा कश्मीर बिखरता, धुन गैर देश की यहाँ ना गाओ, भारतवासी एक हो जाओ, उसको बेहतर सबक सिखाओ, भारतवासी एक हो जाओ, पराक्रमी जल थल वायु सेना, इस मिट्टी की कसम भी लेना, जब अग्नि पृथ्वी ब्रह्मोस उठाओ, भारतवासी एक हो जाओ, आओ एक ऐसा दिवस बनाए, हर हाथ तिरंगा ऊपर उठाए, 125 करोड़ तिरंगे बनवाओ, भारतवासी एक हो जाओ, भारत माता की जय।
0: तो खेवन भाई, आपने बहुत प्यारी कविता सुनाई, हमें बहुत मजा आया सुनकर, लेकिन ये बताइए आप एक और अब कविता भी हमें सुनाना चाहते हैं?
3: जी दीदी।
0: तो सुनाइए। कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए।
3: पर्वत और पानी, धरती की ये धरोहर पुरानी, किसी लालच से नहीं ये घटा, और भी इनका जीवन बढ़ा, जीने वाला हर कोई जाने, कितना कुछ है इनकी संगतियाँ, कुदरत करती मोह से बतिया, भोर से दिन भर और फिर रतिया।
0: बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कविता आपने हमें सुनाई, कुदरत करती मोसे बतिया, आगे
3: भोर से दिन भर और फिर रतिया।
0: भाई क्या बात है, ये मुझे बहुत पसंद आई, और उम्मीद करती हूँ हमारे सुनने वाले श्रोताओं को और यहाँ स्टूडियो में बैठे बच्चों को भी बहुत पसंद आई है ये कविता। और इस रचना के साथ ही बाल सभा कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। सब बच्चे मिलकर बोलेंगे।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे इसका संस्कृत वर्जन। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक,

0: फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना गिट बैग।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
3: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि

हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत

केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं,

फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं।

उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मान

चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदे। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है।

0: 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के एक कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम। बस कुछ ही पल

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ रचनाएं। यह है इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। जावेद अली की आवाज, फिल्म का नाम आक्रोश, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम में आप सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले और गाने वाले कलाकार हैं कार्तिक, महालक्ष्मी और अंतरा मित्रा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो।
4: प्रीतम के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना है, आवाजें आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की, फिल्म का नाम दे दनादन।
3: हर बाजार जगाती है कयामत कोई।

उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व

0: मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम आपको संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ फिल्मी रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का गाना। इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और धुन प्रीतम की।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्मों ए दिल है मुश्किल का ये गीत। आइए सुनते हैं हिमशिखा और अरिजीत सिंह की आवाजी। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई

आई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और जोजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है बर्फी। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन प्रीतम की ही है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार प्रीतम की कुछ संगीत रचनाएं।

लीजिए सुनिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह अच्छे हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप बाहर से हंस रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अलग चल रहा है ना? भाई होता है ऐसा, कई बार हम बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन भीतर कोई तूफान हमारे बहुत तेजी से चल रहा होता है। लेकिन एक इंसान को अपने स्वरूप को छिपाकर बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। शायद समाज में यही सब चलता है और हम यही तो करते हैं। तो आप में से हमारे बहुत सारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कुछ उथल पुथल भी हमारे चल रही होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कैसे हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। यही है एक कलाकार की एक विशेषता, एक गुण जिसे हम कह सकते हैं। और आपने देखा है कि हिंदी फिल्मों में भी ऐसे कई गीत फिल्माए गए हैं दोस्तों, जहां नायक या नायिका होंठ नहीं हिलाते बल्कि कुछ गीत उनके अंतर्मन की आवाज या विचारों के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं, है ना? तो ये फिल्मी पर्दे पर फिल्माए हुए गीत नायक या नायिका के मन की उलझनों और भावनाओं को बिना होंठ हिलाए व्यक्त कर जाते हैं। और ये गीत किरदार की तन्हाई और आंतरिक पुकार को, उसके दिल के दर्द को, उसकी सोच को पृष्ठभूमि में बहुत खूबसूरती के साथ बयां करते हुए नजर आते हैं और हमारी आंखें भी भीग जाती हैं। भीगती है ना? तो याद कीजिए वो पल जब आपकी आंखें किसी दृश्य को देखकर, किसी गाने को पर्दे पर चलते हुए देखकर भीगी होंगी। हाँ, आज की जो हमारा टेक्स्ट है, आज का जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं। बहरहाल ये भी आप जान लें कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो हमारा आज का टेक्स्ट है, बाहर की दुनिया में कदम रखते ही हम एक मुखौटा पहन लेते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे का, सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने का, लेकिन उस मुखौटे के पीछे हमारे भीतर एक अनवरत युद्ध चल रहा होता है। भीतरी उथल पुथल और इस वैचारिक तूफान से हम विचलित हो जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें नायक या नायिका फिल्मी पर्दे पर इन गीतों में होंठ हिलाते हुए नजर नहीं आते बल्कि ये गीत उनके अंतर्मन की आवाज या वैचारिक द्वंद्व के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं। तो कौन सी गीत है अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके संदेश देखे हैं, आप लोगों ने दुनिया भर के गीत हमें लिखकर भेज दिए हैं। जी तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला सुरीला सफर का, और इस सफर में हम सभी साथ हैं, है ना? तो चलिए फिल्म आंधी का ये गीत याद कीजिए, जहां आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार साहब के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड में भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और योग की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समुद्र से लेकर आसमान तक देश की सुरक्षा लगातार मजबूत हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय के नौसेना में शामिल होने तथा भारत में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे 40 विमान बनाए जाएंगे जिससे MSME और एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्थिति के बारे में भी बात की।
1: मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11,00,000 परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में युवा खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड फुटसल लीग की चर्चा की। नागालैंड बेबी लीग 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इस लीग के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है, जिसमें हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये मैच छोटे आकार के मैदान पर खेला जाता है। श्री मोदी ने कहा कि नागालैंड महिला फुटसल लीग से राज्य की कई महिलाओं की प्रतिभा देखने का अवसर मिला है।
1: आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं।
0: इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत को 102 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक मिले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है, वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माया नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए, जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी आंखें भर आई हों और छल छला आई हों या गला रुंध गया हो या आप रोने से लगे हों, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छल छलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं लेकिन आपके भीतर की आवाज क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना, कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म का नाम था कागज की फूल। एक श्रोता लिखते हैं कि पर्दे पर फिल्म की नायिका वहीदा रहमान, वक्त ने किया क्या हजी सितम गाने में हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन और दर्द भरे गानों में से एक है। फिल्म कागज के फूल का ये गीत समय की क्रूरता, अधूरे प्रेम और पहचान के खो जाने की एक अमर दास्तान है। एक प्रसिद्ध निर्देशक और उनकी अभिनेत्री वहीदा रहमान के बीच के अधूरे प्रेम और अलगाव पर आधारित है ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत है ये। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बज रहे गीत की पार्श्वभूमि में अगर नायक या नायिका लफ्ज हिलाए बगैर फिल्मी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे गीत ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है, आप ढूंढिए, बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। वैसे जो आपने 10 गीत लिखे हैं उनमें से बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, देखिएगा कितने गीत मिलते हैं हमारी पसंद से, है ना। वहीं आप लिखते भी हैं कि कुछ और गीत आते हैं तो जरूर लौटकर आऊंगा। अरे वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में कौन से गाने होंगे इसकी मुझे बहुत उत्सुकता है। मुखौटे के पीछे की बात तो वाकई दिलचस्प है। भाई मुखौटा तो आपने भी पहन रखा है, जीवन में जरूरी भी है और हम पहनते भी हैं, लेकिन हाँ उस मुखौटे के पीछे अगर हमारा क्रूर रूप है वो गलत है। मुखौटा तो जीवन में हम पहनकर निकलते ही हैं रोज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर इबारत पढ़कर दिल खुश हो गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत विषय लेकर आई हैं। हिंदी सिनेमा में पार्श्व गीत केवल दृश्यों को भरने का माध्यम नहीं बल्कि ये कथा के विस्तार और पात्रों की अंतरात्मा की आवाज होते हैं। ये गीत अक्सर मौन में छिपी भावनाओं, अनकही तड़प और परिस्थितियों के मर्म को सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचाते हैं। गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना भारतीय फिल्मकारों की एक सशक्त शैली रही है जो दृश्य और संगीत के संगम से एक ऐसा भावनात्मक कोलाज बनाती है जो सीधे रूह को छू लेता है। जब पर्दे पर पात्र मौन होते हैं या परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि संवाद कम पड़ जाते हैं, तब ये गीत कहानी का भार अपने कंधों में उठा लेते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पार्श्व में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना आप। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है, हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज़ न थे। नहीं नहीं आप कहाँ हैं बेवफा।

हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती है कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है, मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते, कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है, लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं, जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया है जब हमसे कोई पूछता है, जबकि जरूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि एक बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो एक घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे, क्या करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं, बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थी। फिल्म हाथी मेरे साथी में जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, तो आंखें भर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलकें का है जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें जी। तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म बाजार से, मिर्जा शौक की ये रचना है और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को, साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि इस अंदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खास तौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्मों में जब अभिनेत्री को गोली लग जाती है तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर्मन में द्वंद्व तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है, अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मनदा के गाए ज्यादातर गीत अंतर्मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत सारे ऐसे गीत हैं SD बर्मन साहब के जो अंतर्मन की आवाज है, और उन्हें पर्दे पर देखकर या जिंदगी में गुनगुनाते हुए जब हम उन्हें गुनगुनाते हैं तब भी हमारा मन भर जाता है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन की ही आवाज यानी बर्मन दादा की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना।

अगर आप बता सके तो बताइए। पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा।

सचिन देव बर्मन की आवाज थी, फिल्म का नाम था आराधना। हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर के साथ उनके पिता के रोल में, जिनका नाम फिल्म में गोपाल त्रिपाठी है, कौन से कलाकार हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये कलाकार गीतकार और संगीतकार भी हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फ्लैशबैक गीतों की अगर बात करें तो संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन जी ही एक ऐसे गायक हैं जिनके गीतों को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक में फिल्माया गया है। शायद ही कोई गीत हो जो सचिन दा की आवाज में किसी अभिनेता पर फिल्माया गया हो जिसमें अभिनेता ने अपने होठ हिलाए हो। वैसे मैंने अलग गीतों की लिस्ट पोस्ट कर दी है, देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने गीत बचते हैं। बिल्कुल, आज तो हमारी पसंद के गीत जो बज रहे हैं, यानी हमने जो गीत चुने हैं, आपकी लिस्ट में वो लगभग गीत शामिल है।

और इसके लिए तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप सभी को ढेरों बधाइयां दे भी दी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के पात्र को समझना, उस पात्र के मन में क्या चल रहा है, इस बात को पर्दे पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि निर्देशक के हाथों में सारे पात्रों के धागे होते हैं, इसलिए कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों से गाने ना गवाकर पार्श्व में गाना चलाते हैं। ये काम निर्देशक के लिए और संगीतकार के लिए मुश्किल होता है। पात्र के अंतर्द्वंद्व को कलाकार अपने अभिनय से पर्दे पर साकार करता है, लेकिन वो किस तरह साकार करे निर्देशक को सोचना होता है। सभी की मेहनत और सोच का परिणाम होता है ऐसा गाना जो आज भी दर्शकों को याद आता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म निकाह में सलमा आगा और उनके पति के साथ जब हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उनके पति बिजनेस के काम में उलझ जाते हैं और अपने पति को समय नहीं दे पाते, तब सलमा आगा अकेली पड़ जाती है और ये गाना बजता है, समा भी है जमा जमा, ये गाना, और मतलब ये सिचुएशन आपको पसंद आई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका लिखना है कि आंधी की भावपूर्ण गाने से सफर के विषय वस्तु की संवेदना अनुरूप जबरदस्त आगाज, और ये फिल्म भी अंतर्द्वंद से भरी हुई फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, आंधी फिल्म तो बहुत ही कालजयी फिल्म है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बढ़िया थी मैं आज की। आप सभी उद्घोषकों की खासियत ये है कि आप कार्यक्रम में विविधता बनाए रखते हैं, जिससे कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए जब बैकग्राउंड में ये बजता है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। बेहद मार्मिक गीत है, दर्द भरी रफी साहब की आवाज़ भी दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक गीत है वो। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत मेरे साजन है, उस पर जब भी सुनती हूँ या देखती हूँ तो मेरी आंसू नहीं रुक पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत भी बहुत दर्द को समेटे हुए है। तो हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि इस वक्त आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। कार्यक्रम तो आप हमारे साथ सुन ही रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं सफर में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है एक एक पंक्ति में बताइए ना। तो चलिए बंदिनी फिल्म का ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत थोड़ा सा हमने बदल दिया है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत।

हमारे सवाल के जवाब में श्रोता जवाब दे रहे हैं सवाल का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी मैं तो सुबह ध्यान करता हूँ इसलिए मन शांत रहता है, इसलिए तूफान की कोई संभावना नहीं होती। बहुत शानदार। वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि कार्यक्रम सुनते हुए मन में चल रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और कौन कौन से जरूरी काम है जिन्हें निपटाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि क्या तूफान चल रहा है भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कैसे इतने अच्छे सवालों का जवाब दे, क्या खूब। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था सफल होगी तेरी आराधना में, कलाकार थे पहाड़ी सान्याल। बिल्कुल सही कहा आपने, पहाड़ी सान्याल थे और जो गोपाल त्रिपाठी की भूमिका में होते हैं। और पहाड़ी सान्याल एक गीतकार और संगीतकार भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी नागेंद्रनाथ सान्याल भी बहुत बड़े कलाकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं लोगों को ऊपरी तौर पर बड़ा ही शांत नज़र आता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो उथल पुथल मची रहती है, उसके बारे में मैं ही जानता हूं। ये सिलसिला जारी ही रहता है। इनसे उबरने के लिए मैं या तो डायरी लिखने बैठ जाता हूं, या लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं, या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर लेता हूं। बिल्कुल यही तरीका है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी भी चैन नहीं आता जीवन में। अरे मन को समझाइए, बहुत ज़रूरी है मन को समझाना। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन मंदाकिनी जी बहुत ही अच्छा है, आवाज़ मीठी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हम भी आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आप इस सफ़र में अंत तक बने रहते हैं और हमारी जमकर तारीफ करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहाड़ी सान्याल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो शर्मिला टैगोर के पिता बने फिल्म आराधना में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में जब नरगिस कीचड़ में पड़े चने अपने बच्चों को खिलाती है तब रोना आ जाता है। बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, ऐसा सीन है वो वाकई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का ये गाना वो जाने वाले तो ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप भी कभी विविध भारती का कोई प्रोग्राम जब प्रस्तुत करती हैं तो अगर उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो भी आप हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने देती हैं, हम श्रोताओं का मनोरंजन करती रहती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म वीर जारा में गाना चलता है दिल में मगर चाहत के दिए, बहुत ही भावुक गाना है, तब हम भावुक हो जाते हैं। और एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्मन की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, इसलिए शायद इंसान कभी कभी खुश होता है और दुखी भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा का जो आलाप है वो हमें भावुक कर देता है, बिल्कुल उनकी आवाज़ तो जैसे कोई ईश्वरीय आवाज़ है ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन में जो हलचल है उसे कैसे व्यक्त करूं, आज हंसी का मुखौटा ही सही, बस विविध भारती के कार्यक्रम को सुनना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन के स्वर सबसे अनोखे और उनके गाए गीत बहुत विलक्षण लगते हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी आवाज़, मैं बता नहीं सकता, उनके गाने सुनकर मैं न जाने किस दुनिया में खो जाता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप हमें भावुक करने में सफल हो गई हैं। सच में भावुक हो गए आप? अरे ज़िंदगी में भावुकता भी ज़रूरी है, हाँ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, भावुकता भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भावुक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर लें। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त में जब घरेलू झगड़ों में घर का बंटवारा होता है और दीवार खड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में गीत बजता है वो देखो जला कर किसी का, ये फिल्म अनपढ़ का गाना है, तो ये बहुत गीत मार्मिक लगता है। गीत ही अपने आप में इतना गंभीर है कि इसे सुनकर ही जो है मन में तूफान उठ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्वदेश फिल्म का गीत ये जो देश है तेरा भी आंखें भिगो देता है, बहुत सुंदर। और कई श्रोता लिखते हैं कि मेरे चयनित गीतों से एक और गीत सफल होगी तेरी आराधना भी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आपने पैनी नज़र रखी आज हमारी जो हमने जो टैक्स दिया था उस पर और गीत ढूंढने में आप सभी सफल हो गए। चलिए एक ऐसा ही और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम आपकी कसम, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियां तो तब भी सांसें भारी लगे थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है जिस आपकी आवाज़ में का प्रवाह गंगा नदी के समान है, शुक्रिया मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, बहुत शानदार गीत है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूँगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं, ये थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। देखिए बदल गया है मंजर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मंदाकिनी जोशी चाहती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: aviation sector in June, with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Man Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's

0: The MD Kiku. Iran's foreign ministry meanwhile said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as a treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the US Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और

0: स्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है।

0: मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से

0: अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका है लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम है दिल ही तो है, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया?
3: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन की संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहां है? कार्यक्रम

0: रहेगी।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत महेश्विन, श्रीनु सुजाता, ग्रीष्मा दीपक, रमेश कनक, लक्ष्मी श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

अनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनकी परिवार वाली। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित भट्टो। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
3: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितनी में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का

0: क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
1: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
0: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
1: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
0: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
1: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है, तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
2: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो माँ, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
0: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
2: हेलो।
1: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। बैठिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
0: आपके नर्सिंग होम की तुलना में। भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
1: सुना।
0: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
0: अम्मा जी,
1: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
0: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला? तुम जानती हो सोमा? उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
1: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसके दूर का रिश्तेदार एक लड़का है। तब खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
1: कैसी चिट्ठी है?
0: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
0: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
0: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
1: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती हैं भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
1: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
0: मदद? तुम
1: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
0: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
1: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
1: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
1: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ कर।
1: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई, सब्र करो सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
1: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
0: अच्छा, बाय बाय।
2: मुझे तो

0: पहले ही मालूम था।
1: क्या मालूम था तुम्हें?
0: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
1: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
0: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
1: ये भी कम हटीली नहीं है।
0: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
1: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
0: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
1: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
0: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा, मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
1: फिर
0: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
1: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
2: कंपाउंडर
0: जी अभी आया।
2: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
0: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
2: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया तक।
0: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
2: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गाँव में जाकर रोगियों को देखती हूँ। जी बहुत अच्छा।
3: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
0: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, घर फटकार दिया।
3: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
4: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
3: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
0: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
3: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
4: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
0: आजकल गाँव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
4: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
3: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख हैं जी कब तक चलेगा।
0: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
3: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
4: शाबाश, ये हुई काम की बात।
0: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
5: डॉक्टर साहब,
2: क्या हुआ भाई? ये खाओ ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
5: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
2: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
5: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
6: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
5: दवाएं क्या हुई?
6: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
5: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
2: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
5: अच्छा,
2: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
5: ठीक है,
6: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
2: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब एक बात है। बताओ जानम्मा, क्या बात है? कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा। घबराने की क्या बात है, बताओ ना। वो उमा जी के घर में,
5: मर्द नायकम जी के घर में क्या बात है?
2: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
7: डॉक्टर साहब,
2: कोई बात नहीं है।

0: तुम फिक्र ना करो अल्लाह बख्श, उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
0: कौन है?
1: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
0: आप कौन हैं? अरे बहनम, मैं तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
2: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
0: क्या?
2: कुमार स्वामी के घर?
1: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
0: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
2: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
0: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
2: अब की बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
0: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
3: डॉक्टर साहब,
0: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
1: उस कमरे।
0: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
3: आइए डॉक्टर साहब, इधर से
0: चलिए।
1: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
0: कंपाउंडर
3: जी, ये लीजिए दवा का बच्चा।
0: लो।
3: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है और...
0: कोई भी दवा बेकार है।
3: डॉक्टर साहब,
4: डॉक्टर साहब,
3: नहीं नहीं नहीं।
0: कंपाउंडर
3: जी,
0: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
3: जी,
0: जान निकले काफी देर हो चुकी है,
1: नहीं।
0: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम कीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
3: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
5: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
0: कंपाउंडर चुप रहो, ये बदतमीजी है।
5: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप घर रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
5: चलो
0: चलो,
1: मेरा राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा।

0: आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा?
0: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
0: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा।
0: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे टाल सकती हूँ।
0: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।
1: जरूर।

0: कैसे हो? अरे देर भारती तुम आ गई, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए चलिए। भाई तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: नहीं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो।
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है, उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है,
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
4: सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
4: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोग्य स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
5: अरे कोई है?
6: बड़ी आई है,
7: हमें डराती है, हटा पीछे।
8: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
7: ए नको, चलाओ पत्थर।
9: पकड़ो पकड़ो पकड़ो,

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमारी।
0: वो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दिलाता हूं।
1: आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
2: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
3: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।

0: डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की। आपको अकेले ही वहां जाना ठीक नहीं था।
1: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहां था? और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके। तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
1: चिंता की कोई बात नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरा काम यही शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
0: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं। वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
1: हाँ। डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
0: जरूर जरूर।
1: देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
0: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
1: गुड बाय।

0: क्या सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोची तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूं।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल तटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों में।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है, और इसकी पहल

0: ज्योतिबा फुले ने की थी, जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा सब कुछ, वो जिस तरह से आया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया,
0: हाँ,
1: वो तो किसी भी विषय का जिक्र करें
0: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा
0: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना,
0: हाँ वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते हैं।
1: yes.
0: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट right? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
0: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स, और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, और अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती।

0: तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
1: बिल्कुल
0: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले हाँ, को दौड़ जाती है
0: हाँ,
1: मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
0: और वो पूरे
1: साढ़े तीन दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
0: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। नहीं, बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था वहां पर। करा, पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या

0: हो क्या रहा है?
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह, उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आने लगे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक तकलीफ, एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ, जो सुप

0: सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बन चुके, बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले तो, या आफ्टर सड़क आई थिंक, तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग, तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है, पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला, उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं,
1: तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था,
0: सोलो था, और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: ये 2003-04 की बात कह,
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले, और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है,
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने के प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है,
1: बिल्कुल,
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है, और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया, तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे अंदाज़
0: था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है।

0: वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली, तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा।
0: ये फिल्में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह।
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा,
0: में
1: वा।
0: जहां भर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं। उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे, तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूँ मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गए, डॉक्टर अनिल अवसठ हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: वाह वाह।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे, तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं साथ में।
1: वाह वाह।
0: बिल्कुल बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे, और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह।
0: हाँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज

0: तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सबके लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, नेहरू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लगनाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा नेहरू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो नाटक जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था, तब
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ, डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, नीलू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की
1: कमर्शियल, एग्जैक्टली, हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
0: वाओ,
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने के हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और

0: फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ. इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की. इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे. हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है. मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड. और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया. तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे. इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था. और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था. बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे. तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया.
1: गजब.
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो. तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम. तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे. तो पापा ने कहा ठीक है. उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था. तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
1: क्या बात है.
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी. उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम. और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है. तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए. तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है.
1: क्या बात है.
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया. और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए. इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात.
1: वाह वाह.
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी. जैसे मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे. तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए. इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है. तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल. चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: वो बताएं.
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी और मुझे वहां पर फोन आया. प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं. मैंने कहा क्या. मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है. तो आपके पापा पर

0: किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सब के लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसे लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी कहा अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था। इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती। पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है। बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो पापा, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है, जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो उसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ
1: था। और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे। इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता था,
0: बहुत करीब से देखी हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था।
1: बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का। हाँ। ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ऑफ कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही पलों में 5:05 पर आप सुन सकते हैं गाने नए पुराने।

शाम 5:23 पर आप सुन सकते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की।

शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 7वें अध्याय से श्लोक 8 से 11 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी। श्रोताओं, शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 से मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा।

रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। और रात्रि 11:10 से यदि मैच जारी रहा तो उसका आंखों देखा हाल जारी रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गाने नए पुराने।

दोस्तों, पलकों की छाव में फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, पलकों की छाव में फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर।

दोस्तों, मोहरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे विजू शाह। साथियों, मोहरा फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और ये गीत स्क्रीन पर फिल्माया गया था एक्टर अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर।

दोस्तों, सर फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा था कातिल शफाई ने और संगीतकार थे अन्नू मलिक। दोस्तों, सर फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और ये महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी।

दोस्तों, प्यासा सावन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, प्यासा सावन फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था जितेंद्र और मौसमी चटर्जी पर। साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए पुराने समाप्त होता है। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने। साथियों आज है 28 जून और 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश, जिसको अब तेलंगाना बोलते हैं, तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुआ था। और पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जनक माना जाता है। वो जून 1991 से मई 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। देश के गंभीर आर्थिक संकट के समय उन्होंने और उनके वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने दोनों ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खोला, जिसने भारत के विकास की जो नींव थी वो मजबूत बना दी। पीवी नरसिम्हा राव को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि हिंदी, तेलुगु, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और भी कई विदेशी भाषाएं। दोस्तों राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पीवी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। आइए अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के आज के संक में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, आईटीआई उमरी के विभिन्न कोर्सों के बारे में जानकारी। पर साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के बारे में। साथियों, दिनांक 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। और साथियों, आज कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा मधुबन से मैं अवेयरनेस प्रोग्राम इंचार्ज हूँ। पूरा हरियाणा में जागरूकता कार्यक्रम करके युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करती है।
2: अशोक कुमार वर्मा जी, आज दिनांक 26 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
1: जी, ये जो नशा निषेध दिवस है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 1987 से मनाने का ये कार्यक्रम हुआ था शुरू। तो तब से पूरे संसार के अंदर ये 26 जून का दिन मनाया जाता है। 26 जून का दिन मनाने का मुख्य कारण ये है कि पूरे संसार के अंदर, न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में, जो ड्रग्स का समस्या है बड़ी विकराल रूप ले चुकी है। और इसको नष्ट करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए पूरा विश्व में जो है कार्य कर रहा है।
2: सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पूरे हरियाणा को देख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा की स्थिति क्या है नशे को लेकर, और किस तरह कार्यक्रम हमारे कर रहे हैं हरियाणा की, अगर हम बात।
1: हरियाणा में पहले हमारी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है। हरियाणा पुलिस ने, सरकार ने 25 अगस्त 2020 को हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर के हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने के लिए एक अलग विभाग खड़ा कर दिया है, जिसका नाम है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एनसीबी भारत सरकार ने 1986 बनाई थी, वो आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारत हरियाणा सरकार ने अपनी खड़ी कर दी है। क्योंकि पुलिस के

0: पर बहुत सारे काम थे, इसलिए सरकार ने सोचा भी पुलिस एक अलग विभाग खड़ा किया जाए जिसका काम केवल स्टेट को नशा मुक्त करना हो। तो 25 अगस्त 2020 से हमारी एनसीबी हरियाणा जो है अस्तित्व में आई है और हम दो प्रकार से काम करते हैं हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए। पहला तो जो नशा तस्कर है उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, और दूसरा नशे के विरुद्ध हम जागरूकता अभियान चला करके पूरे हरियाणा में लोगों को, युवाओं को नशे से दूर रहने की जागरूक भी कर रही है।
1: तो सर आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा की स्थिति क्या है अगर नशे की हम बात करें, किस तरह की कार्रवाई आपका जैसे विभाग आपने कहा इस तरह कार्रवाई हम करते हैं।
0: स्थिति की बात यह है कि हमने पिछले वर्ष में यानी कि 2023 के अंदर 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा में 3823 FIR काटी है, मुकदमे दर्ज करे हैं, अभियोग अंकित किए, और इन अभियोगों में हमारी एनसीबी ने हमारी पुलिस ने मिलकर के 5460 अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाला है एक वर्ष में इस तरह काम किया। इसके अतिरिक्त जो नशा तस्कर है जो बार बार नशा बेच करके पैसा कमा रहे थे उनकी संपत्तियों पर पीला पंजा भी चलाया गया, और इसके अलावा 22 ऐसे नशा तस्कर थे जो बार बार यही काम कर रहे थे उनको भी 1 साल के लिए नजरबंद किया गया है, जेल में डाला गया है। और दूसरा काम तो हम जहाँ स्थिति की बात आप पूछ रहे हो कि नशे की जो स्थिति है हरियाणा की, वैसे तो 2016 के अंदर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये रिपोर्ट आई थी हरियाणा के उसमें 12 जिले ऐसे थे जो पूर्ण रूप से नशे की चपेट में थे, और अब हरियाणा सरकार हरियाणा पुलिस एनसीबी मिलकर के हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, अपराधियों को पकड़ने पूरा किया जा रहा है और दूसरा काम भी हम कर रहे हैं।
1: सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई नशा तस्कर आप पकड़ते हैं, किस तरह के जो नियम है या कहें किस तरह के कानून
0: है? एक्ट में प्रावधान है इसके अंतर्गत नशा तस्करी के अपराध संघीय अपराध माने जाते हैं, कोग्रीजिबल ऑफेंस होते हैं और ये अजमानतीय अपराध होते हैं, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होते हैं।
1: सर मान लीजिए हमारे आसपास कहीं पे नशा तस्कर है या कोई नशा करता है तो कहाँ पे हम उसकी शिकायत कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, एनसीबी ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 9058091508, यानी बड़ा सरल नंबर है 9058091508। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति हमें दो प्रकार की सूचनाएं दे सकता है। पहली, कोई यदि नशा बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है तो आप हमें बताइए, तो बिना डरे कोई करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। दूसरा, यदि कोई नशा छोड़ना चाहता है उसके लिए भी सरकार ने उपाय बंदोबस्त किया हुआ है। हरियाणा के प्रत्येक जिले के सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर विशेष रूप से नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, वहाँ डॉक्टर बिठाए गए हैं, काउंसलर बिठाए गए हैं जिनका काम केवल यही है ऐसे लोगों को काउंसलिंग करके उनको नशा छुड़वाया जाए।
1: सर आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मना रहे हैं तो क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा?
0: मेरा संदेश ये होगा कि नशा मुक्त होगा हरियाणा, अरे मिलकर सारे जोर लगाना, नशा मुक्त होगा मेरा भारत, और सब मिलकर के काम करेंगे तो हम अवश्य अपने अभियान को सफल कर पाएंगे। नशा मुक्त हो भारत मेरा, ऐसी सोच बनानी है, नशे में ग्रस्त हो रही युवा पीढ़ी, मिलकर सबको बचानी है, है सच्चाई नशा बुराई, यह बात जन जन तक पहुंचानी है, यह बात जन जन तक पहुंचानी है।
1: अशोक कुमार वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: साथियों इसके अलावा एक और हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से नशा मुक्त भारत अभियान है वो चल रहा है, और साथियों अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य में ही आज हम आपको जानकारी देंगे नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। और साथियों नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं पुलिस प्रवक्ता कुरुक्षेत्र श्री नरेश कुमार जी। श्री नरेश कुमार जी बहुत स्वागत है आपका।
2: जी धन्यवाद आपका और जितने भी हमारे श्रोता साथी है सबको बहुत बहुत नमस्कार।
1: नरेश जी आज हम नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में बातचीत करेंगे और आज खास दिन है 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: जी जैसा कि आपने अभी बताया कि आज 26 जून को नशा निषेध दिवस मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो ये बात जानने की है। क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में नशा एक ऐसा जो चलन चला है, बहुत ज़्यादा नशा आजकल युवा करने लगे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोकना, उनको काबू करना, शायद इसी मकसद से नशा निषेध दिवस को मनाया जाता है। और मैं इसमें समझता हूँ कि बीमारियों से ज़्यादा मौतें जो नशे के कारण होती हैं, इसीलिए शायद ये नशा निषेध दिवस मनाया जाता है।
1: इसके अलावा नरेश जी हम ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूकता ही फैलाएंगे कि नशा है, सभी को पता है कि नुकसानदायक है, हानिकारक है, तो हमें ये बताइए किस तरह के जागरूकता के जो कार्यक्रम है, जो विभाग है हमारा वो करता है।
2: हाँ जी बिल्कुल, देखिए 26 जून जो नशा निषेध दिवस है उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं एक अभियान चलाया जाता है हर वर्ष। इस वर्ष भी 12 से लेकर 26 जून तक एक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा चलाया गया, उसके तहत तमाम प्रशासन ने, पुलिस ने अपना बहुत कुछ प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत से प्रोग्राम आयोजित किए जिनमें आमजन को जागरूक

0: किया गया कि भी नशा जो है वो सब अपराधों की जड़ है। मैं क्योंकि पुलिस विभाग से हूं तो हम उसी संदर्भ में बात करते हैं। पुलिस हमेशा दो तरीके से काम करती है, एक तो नशे को पकड़ना, उसकी जड़ तक जाना, कहां से नशा लेकर व्यक्ति चलता है, कहां तक उसको पहुंचाना है, इन सभी व्यक्तियों को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। दूसरा है आमजन को जागरूक करना। आमजन मतलब आज की बात करें तो युवा, भारतवर्ष को युवा देश कहा जाता है क्योंकि युवा ज़्यादा हैं, और यदि बात करें नशे की तो वो भी युवाओं में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो युवाओं को जोड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए किसी दूसरी चीज से लगाव लगाना होगा। इसी बात को शायद ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक हैं श्री शत्रुजीत कपूर जी और श्री ओपी सिंह जी जो हरियाणा स्टेट कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं, उन्होंने इस बात को इस ध्यान में रखते हुए एक मुहिम छेड़ रखी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलों की तरफ उनकी रुचि, बहुत से सेमिनार किए, वर्कशॉप की, आमजन को सड़कों पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जागरूक किया। और दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने बहुत से ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो इनकी तस्करी में, नशे की तस्करी में लिप्त थे।
1: यानी जो आपने सर बात कही कि दो तरह से हम काम करते हैं, एक तो जागरूकता फैलाते हैं, दूसरा जो नशा करते हैं उनको पकड़ते हैं, तो हमें ये बताइए किस तरह के नियम कानून हैं हमारे संविधान में जो कि जो नशा तस्करी करता है किस तरह के जुर्माना उसे लगाया जाता है, किस तरह के कानून का सामना उसे करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बताइए।
0: यदि नशा तस्करों की बात करें, देखिए उसमें तीन क्वालिटी जो है प्रशासन की तरफ से कहें ये कानून में लेवल पे करता है, उसके ऊपर एक पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है कि कहीं दोबारा तो इस तरह का कार्य नहीं कर रहा। तो इसीलिए
1: और उसी तरह से जब हम आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मना रहे हैं तब इन दिवसों को हम पूरी तरह से मनाने में सफल होंगे।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुलिस द्वारा आमजन से ये अपील की जाती है कि कोई भी जो युवा है पहली बात तो नशे से दूर रहे, अपनी जो ऊर्जा है क्योंकि युवाओं में बहुत ऊर्जा होती है, अपनी ऊर्जा को या तो खेलों में लगाए क्योंकि हरियाणा खेलों में हमेशा से अग्रणी रहा है, बहुत से नाम, बड़े नाम हैं हरियाणा में, नीरज चोपड़ा जैसे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकले हैं। तो पहली बात तो आप खेलों में भी इसको अपनी ऊर्जा को लगा सकते हैं, दूसरा आप किसी दूसरे फील्ड में भी लगाना चाहिए, चाहे पढ़ाई है, दूसरे किसी भी फील्ड में लगाएं लेकिन नशे से दूर रहें। दूसरी बात जो परिवार के बड़े लोग हैं तो वो इन चीज का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ जाते हैं, संगति का बहुत जल्दी असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं गलत संगीत में ना पड़ गया हो उसे संस्कार दें। कहते हैं ना कि बच्चे को यदि आप खिलौना नहीं दोगे तो घंटा दो घंटा रोएगा, लेकिन उसे संस्कार नहीं दोगे तो उम्र भर रोएगा। तो हमें संस्कार देने चाहिए, बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, कहाँ बैठता है, कैसा, ये थोड़ी सी यदि हम थोड़ी सी अवेयर होंगे, थोड़े से भी जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से हम इस दलदल से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। और जब नशा करने वाले ही नहीं रहेंगे तो नशा तस्कर अपने आप घर बैठ जाएंगे, उनके पास कोई काम ही नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है और इसमें आमजन का सहयोग उतना ही जरूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन या सामाजिक संस्थाएं एक लेवल तक काम कर सकती हैं, लेकिन यदि उसको कामयाब बनाना है, उस आयोजन को, उस सेमिनार को या उसी किसी भी चीज को कामयाब बनाने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक वो जन आंदोलन नहीं बनता, किसी भी प्रकार का कोई कार्य है जो, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मैं कुरुक्षेत्र पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप भी बढ़ चढ़कर इन कार्यों में हिस्सा लें, समाज से जो ये कलंक है नशा रूपी उसको मिटाने में प्रशासन का सहयोग करें।
1: श्री नरेश कुमार जी, पुलिस प्रवक्ता कुरुक्षेत्र, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमें दी नशा मुक्त भारत पर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: और साथियों, आपको जानकारी देंगे महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के बारे में। साथियों, 27 जून को मनाई गई महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि, साथियों इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं।
3: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह, अध्यक्ष पंजाबी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

कुरुक्षेत्र। प्यारे श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा रणजीत सिंह और उनके राज्य के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे और महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट करने का कार्य किया, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने दिया। और इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरावाला, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ महासिंह के घर हुआ था। उन दिनों पंजाब पर सिख और अफगानों का राज चलता था, जो उन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांटा हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह के पिता महासिंह शुक्रचकिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरावाला में ही था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। वे जब 12 वर्ष के थे तब उनके पिता महासिंह चल बसे और राजपाट का जो सारा बोझ था उन्हीं के कंधों पर आ गया। और सन 1802 में उन्होंने अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्होंने पश्चिमी पंजाब की ओर उनको खदेड़ दिया और पेशावर से लेकर पश्तून क्षेत्र पर अब उन्हीं का अधिकार हो गया था। और यह पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम राजा ने राज किया था। इसके पश्चात उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार अपना स्थापित कर लिया था। पहली आधुनिक भारतीय सेना, जिसे सिख खालसा सेना भी कहा जाता है, उसको गठित करने का श्रेय भी महाराजा रणजीत सिंह को ही जाता है। उनकी देखरेख में, उनकी सरपरस्ती में उस समय पंजाब बहुत शक्तिशाली जो है वो प्रांत बन चुका था। और इसी ताकतवर सेना ने लंबे समय तक ब्रिटेन को पंजाब को हड़पने से रोके रखा। एक ऐसा अवसर भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। और ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर के मुताबिक, अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था जो अच्छे से कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया। गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया और तभी से श्री हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। जो बहुमूल्य हीरा था कोहिनूर, वो महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। और सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का जब निधन हो जाता है तो उनकी जो समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहां पर कायम है, उनकी मौत। में कामयाब हो पाए और उन्होंने अपने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। वो सभी जो कारण और अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें सिखों की हार के क्या कारण रहे, वो उन सभी के जो उत्तर है हमें जंगनामा शाह मोहम्मद की कृति से मिल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वार्ता के पश्चात आप महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, उनके राज्य के बारे में, कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से उनका राज्य इतना मजबूत रहा और अंग्रेज जो थे जिन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था, वो कैसे लगभग उनको 50 वर्ष तक का समय लग गया पंजाब को।

0: अपने कब्जे में लेने के लिए उसके बारे में जरूर आप और जानने के इच्छुक होंगे। इसके साथ मेरा आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।
1: और साथियों, आपको जानकारी देंगे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के बारे में। साथियों, इस समय पूरे हरियाणा और कुरुक्षेत्र जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, साथियों, जो कि 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगा। साथियों, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं।
2: जी, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं एज इलेक्शन तहसीलदार के रूप में कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ।
1: तो संदीप कुमार जी, इस समय कुरुक्षेत्र जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण जो अभियान है 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: जी, जो हमारा 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक चल रहा है, इसमें हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे जिले में अब हाल फिलहाल 7,83,831 वोटर हैं, और हमारे पास 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से हमारा अभी तक 7,42,926 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इन्यूमिनेशन फॉर्म जो हम वोटर को दे चुके हैं। वो हमारा पहले का कार्य था कि हमने अभी जो वोटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब सेकेंड फेज शुरू किया है हमने, जिसमें हम मतदाताओं से जो इन्यूमिनेशन फॉर्म दिए थे वो वापस सिलेक्ट करेंगे। मतदाताओं को उसमें अपना 2002 का डिटेल भर के देना है, जिनका 2002 में वोट था। अगर 2002 में वोटर का डिटेल या कोई वोटर नहीं था तो उसको अपने पिता का, माता का या दादा का डिटेल भर के देना है, और साथ में उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर भी उसमें भर के देना है, और जो इन्यूमिनेशन फॉर्म है वो प्रत्येक वोटर अपना साइन करके देगा। अगर वोटर नहीं है तो उसका परिवार का कोई भी माता पिता भाई बहन उसका साइन करके बीएलओ को सबमिट करवा सकते हैं। जिस भी मतदाता का इन्यूमिनेशन फॉर्म साइन होके नहीं आएगा, उसका ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आएगा।
1: तो सर, आपसे चाह रहे हैं कुछ इस तरह के हमारे मतदाता भी होते हैं कि जिनके शायद माँ बाप भी ना हो, और कुछ ऐसे मतदाता भी होते हैं जो विदेश में रहते हैं, तो ऐसे मतदाताओं के लिए क्या प्रोसेस रहेगा?
2: इसमें सर, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, वो अपने माता पिता नहीं है तो अपने दादा दादी का भी या नाना नानी का भी वहाँ से 2002 की डिटेल डाल के दे सकता है। अगर कोई विदेश में रह रहा है या बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ है, उसके लिए उसके परिवार का कोई माता पिता भाई बहन उसके फॉर्म पे साइन करके बीएलओ को सबमिट कर सकता है।
1: तो और किस तरह के कार्य, जैसे जो बीएलओ हमारे इस समय फील्ड में जा रहे हैं पूरे कुरुक्षेत्र जिले में, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं सर?
2: सर, पहली चुनौती तो ऐसे जैसे अभी जो कॉलोनियां शहर का विस्तार होता है, तो 2002 के बाद कुरुक्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है, जिससे कॉलोनियां शहर के बाहर शिफ्ट हुई है, उसमें उन मतदाताओं को अपना 2002 का डिटेल नहीं मिल पा रहा, और साथ में बीएलओ को उन घरों को भी ढूंढना है भी, जैसे किसी का वोट बना है, उसने हाल फिलहाल में घर चेंज कर लिया है, तो बीएलओ उसको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी बीएलओ अच्छा काम कर रही है।
1: तो सर, आपसे चाहेंगे कि आम जन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि ये बहुत जरूरी कार्य है, एक बीएलओ जाने से पहले हमें किस तरह के और डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है, ताकि जो बीएलओ हमारे घर पे आए वो जल्दी से काम हो जाए हमारा?
2: हमारा आम जनता से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी डिटेल्स हैं 2002 की, वो वहाँ से अपना आइदर तो हमारे ऑफिस आके पता कर सकता है कि उसका 2002 में कहाँ वोट था, या ECI नेट हमारी ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो डाउनलोड करके वहां से भी अपना 2002 का डिटेल चेक कर सकता है। तो अगर उसके साथ जो फोटो देना है हाल का करंट फोटो, ताकि वोट लिस्ट में वो अपडेट हो सके, यही रहेगा जी डॉक्यूमेंट्स का। तो जी,
1: तो उसमें कुछ ये भी होता था कि जैसे जो परिवार का मुख्य सदस्य है उसको भी कुछ कार्य करने की जरूरत है, या कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है इनमें?
2: नहीं, डॉक्यूमेंट सभी के लगेंगे, और मोबाइल नंबर भी सभी को देना होगा, या परिवार में जो रहेगा एक दो मोबाइल नंबर देने होंगे।
1: सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे फॉर्म आप देते हैं, तो उनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें साथ में लगाने पड़ेंगे?
2: इन्यूमिनेशन फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट हाल फिलहाल नहीं देना है। जिनका कोई एलुमनी आती है, उसके बाद 22 जुलाई को जो हमारा ड्राफ्ट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बीएलओ के माध्यम से जिसके फॉर्म में कोई कमियां रह गई हैं, उसके माध्यम से उनको नोटिस जारी होगा, फिर नोटिस के रिप्लाई में डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
1: सर, अंत में आपसे चाहेंगे कि कोई भी हमारा मतदाता है, इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहता है, उसे फॉर्म का पता नहीं चल रहा है, या कुछ और जानकारी वो चाह रहा है, वो कहाँ से वो जानकारी ले सकता है?
2: ये हमारा इलेक्शन ऑफिस में या कंसर्न SDM ऑफिस में जाके, वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स चेक करवा सकता है, या फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए तो हेल्प कर सकते हैं हम। हमारे ऑफिस में भी डेली कोई ना कोई आ रहा है जिसको हम उसका डिटेल दे रहे हैं फॉर्म भरने।

0: के बारे बता रहे हैं या उसका डिटेल ढूंढने में भी हम यह मदद कर रहे हैं।
1: तो संदीप कुमार जी, इलेक्शन तहसीलदार कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: धन्यवाद जी।
1: और साथियों, आपको जानकारी देंगे ITI के विभिन्न कोर्सों के बारे में। साथियों, अगर आप भी ITI करना चाहते हैं तो पहले हमने बहुत से कार्यक्रमों में आपको जानकारी दी कि ITI की जो अंतिम तिथि थी वो थी 15 जून। जानकारी दीजिए
2: इसके बारे में। मैं सर आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले विभाग के द्वारा जो है ऑनलाइन एडमिशन डेट जो है 15 जून तक निर्धारित की गई थी, और उसके बाद जो है बच्चों के रुझान को देखते हुए जो है विभाग के द्वारा डेट जो है इसकी 30 जून तक बढ़ा दी गई है
1: जी।
2: और हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी, विभाग के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, समय समय पर जो है वो बच्चों को जो है सूचित अभी तक किया जाता रहा है। शायद बच्चे उससे अवेयर भी होंगे, और मैं आपके माध्यम से भी पुनः आग्रह करना चाहता हूँ सभी जो हमारे श्रोता हैं कि आकाशवाणी के माध्यम से जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी डेट जो है गवर्नमेंट ITI में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
3: सर, अब बात करते हैं कि कोर्सों की ITI की, कोई भी विद्यार्थी अगर ITI में कोर्स करना चाहता है तो कौन कौन से कोर्स हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं?
2: सर, हमारे यहाँ इस समय गवर्नमेंट ITI कुरुक्षेत्र में हम 20 कोर्सेज जो है वो रन कर रहे हैं। इसमें नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं और इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 1 ईयर कोर्सेज हैं नॉन इंजीनियरिंग में, जैसे कोपा है, ड्रेस मेकिंग है, ट्रैक्टर मैकेनिक का 1 ईयर कोर्स है ये, और हमारा पियानो हिंदी इंग्लिश है, दोनों 1 ईयर कोर्स हैं। उसके बाद हमारे जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनमें जैसे वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, DMC है, इस तरह के जो कोर्स हैं ये 2 वर्षीय कोर्स हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में पिछले वर्षों जो है हरियाणा सरकार के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो नोटिफिकेशन किया हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा कि जो बच्चे 1 वर्षीय कोर्स करके और 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए 1 पेपर जो है वो एडिशनल दे करके हिंदी या इंग्लिश का वो +2 आर्ट्स के इक्विवेलेंट हो जाएंगे
3: जी।
2: और जिन बच्चों ने 2 वर्षीय कोर्स किया हुआ है वो बच्चे एडिशनल अगर 1 हिंदी या इंग्लिश का पेपर हरियाणा बोर्ड से करेंगे तो वो भी +2 आर्ट्स के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अभी NIUS से भी हमारा चल रहा है, वहाँ भी इक्विवेलेंसी का प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किया गया।
3: जो भी विद्यार्थी 30 जून तक अप्लाई करेंगे उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा सर?
2: उसके बाद एडमिशन का सर जो लॉगिन ID उनके पास होगा, बच्चों के पास, उनके पास जो है उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उनके पास, आपका SMS के माध्यम से या उनके पास जो है वो मैसेज के माध्यम से मोबाइल पर आएगा सीट कंफर्मेशन के लिए, सीट अलॉटमेंट, वो बच्चे जो है अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके साइट पर और वहां से सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो निकाल करके जहां पे वो शो होगी उनकी सीट जिस भी ट्रेड में शो होगी उस संस्थान में जाकर के उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें नीचे तिथियां भी दी गई होंगी 3 या 4 दिन की, इस तिथि से लेकर और इस तिथि तक आप संबंधित संस्थान में जाकर के और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके फीस भर के ऑनलाइन और अपनी सीट जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं।
3: सर, अंत में आपसे चाहेंगे क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा?
2: सर, मैं आपके माध्यम से पुनः सभी जो हमारे श्रोता हैं जो ITI में अपना एडमिशन लेने के इच्छुक प्रार्थी हैं, मैं उन सब से पुनः जो आग्रह करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बढ़िया मौका जो है हरियाणा सरकार विभाग के द्वारा जो है बच्चों के रुझान को देखते हुए दिया गया है, जो डेट बढ़ाई गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक विजन है कि हमारा जो यूथ है वो स्किल से संपन्न हो, उनके पास ऐसा स्किल आए कि वो आत्मनिर्भर रहें और स्वयं का कारोबार कर सकें। हमारा भी यही संदेश है कि अपने आप को बच्चे जो हैं वो टेक्निकली स्किल करें, स्किलफुल हों और अपना स्वयं का रोजगार कर पाए और साथ ही साथ जो है सरकारी नौकरियों में भी आवेदन के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशली जो है इंडियन आर्मी में जो आजकल चला हुआ है 4 ईयर वाला जो हमारे बच्चे भर्ती हो रहे हैं उसमें भी विशेष अंकों का प्रावधान जो है ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो वो है सरकार के द्वारा किया हुआ है। पुनः आपके माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि 30 जून का इंतजार ना करें, आप हमारे यहाँ ITI में भी हमने हेल्प डेस्क की स्थापित किया हुआ है तो आप हमारे यहाँ भी आकर के और जो निर्धारित फीस है सरकार की वो भर के और उसका हम निशुल्क फॉर्म जो है वो अप्लाई कराते हैं अपनी ITI से।
3: तो श्री जगमोहन जी, प्रधानाचार्य ITI उमरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। साथियों, आज के अंक में वाचन, संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथ ही उसके साथ ही अनुमति दीजिए।

0: अपने दोस्त अमरीक सिंह को। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हुआ। श्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने, प्राकृतिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को हटाने का संदेश दिया। श्री मोदी ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति की मिट्टी की बनी मूर्तियां खरीदने का आग्रह किया। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के गांव नौलखा में अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को साइकिल प्रदान किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र भारत की उपलब्धियों से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस महीने भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि जून के महीने में ही कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया और कार पूलिंग को प्राथमिकता दी।
1: मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने तकनीक और यांत्रिक मेधा के मौजूदा दौर में अपनी रचनात्मकता बचाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किए जाने का जिक्र किया और इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी। श्री मोदी ने दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नई तकनीक के लिए तैयार करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयास की चर्चा भी की।
1: साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए

0: इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में युवा खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
0: आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार द्वारा लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा करवाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।
1: श्री मोदी ने बताया कि योजना के तहत पीड़ित परिवारों को अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ भी श्रोताओं के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने के उनके अनुरोध का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग देने के लिए देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया और प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक यानी पर्यावरण अनुकूल ईंटों में तब्दील किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदने का आग्रह किया।
0: गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है।
1: श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान की याद दिलाते हुए वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है। उन्होंने डोमिनिका गणराज्य की ब्रह्म कमल डोमिनिकन नामक एक टीम का उल्लेख किया, जिसके सदस्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण सीख रहे हैं और वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने असम के हरगिला पक्षी की चर्चा करते हुए समाज को अंधविश्वास के प्रति आगाह भी किया। श्री मोदी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो विज्ञान, अनुभव और तथ्य के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत के गांव नौलथा में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को स्कूल आने जाने की सुविधा के लिए साइकिल वितरित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 नए कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में पहले भी 500 साइकिल दी जा चुकी है, जबकि लक्ष्य 1,000 साइकिल वितरित करने का है। आज हरियाणा के सभी जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने वाला एक सशक्त मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम

0: देश में हो रहे विकास कार्यों, नए नवाचारों और उन गुमनाम नायकों को सामने लाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हुआ। श्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 7वें अध्याय से श्लोक 8 से 11 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार हैं डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी।
2: श्रोताओं नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 और उससे आगे की व्याख्या सुनेंगे। रसो अहम

शु तपस्चास्मि तपस्वीषु। हे कौन्तेय, जलों में रस मैं हूँ, चंद्र तथा सूर्य की प्रभा मैं हूँ, सब वेदों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में पुरुष मैं हूँ, पृथ्वी में सुगंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, सब प्राणियों में जीवन मैं हूँ, तपस्वियों में तप मैं हूँ। हे कौन्तेय, उत्तम शुभ भावनोत्तेजक पुण्य सुगंध जिन्हें पुण्य फल स्वरूप में मिलता है वह मुझसे मिलता है। परमात्मा के समग्र रूप का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंद्रमा और सूर्य की शोभा तो मैं हूँ ही, सूर्य तथा अग्नि में प्रताप भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। सब प्राणी मात्र की जीवन सामग्री पहुँचाने वाला तथा सत पुरुषों में उत्साह भरने वाला मैं ही हूँ। तपस्वी लोग मेरे ही उपदेश तथा दृष्टांत से तप करते हैं, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का सदोपदेश देते हुए। कठोपनिषद की 5वीं वल्ली मंत्र संख्या 13 में यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, नित्यों में वही एकमात्र नित्य है, चेतनों में वही एकमात्र चेतन है, अनेकों में वही एक है, संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना है, उसका वास आत्मा के भीतर है, उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं उन्हीं को निरंतर शांति प्राप्त होती है। हमें उसका भास क्या होगा, वह तो इतना भासमान है, वहाँ सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वहाँ चंद्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, विद्युत भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है, और फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या, उसकी आभा से उसी के प्रकाश से सूर्य चंद्र तारे विद्युत तथा अग्नि प्रकाश देते हैं, उसी के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो फूलों में महक तेरी, सूरज में तपन तुझसे है, सलिल में शीतलता, अग्नि में धधक तुझसे, जिस ओर नजर डालूं प्रभु तेरा ही नजारा है। ओम यह एक छोटा सा अक्षर है, परंतु निखिल संसार इसी एक अक्षर की व्याख्या है। भूत वर्तमान भविष्यत सब ओंकार का ही विस्तार है। जो भूत वर्तमान तथा भविष्यत इन तीन कालों में नहीं समाता, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार का ही प्रसार है। मांडुक्योपनिषद मंत्र 8 के अनुसार अक्षरों और मात्राओं में उस आत्म तत्व का वर्णन किया जाए तो उसे ओंकार कहते हैं। बीज माम सर्वभूतान

0: विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, सब वस्तुओं का सनातन बीज मुझे समझ। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। मैं प्राणी मात्र का मूल निमित्त कारण हूँ, अर्थात प्रथम अयोनिज रूप में उत्पन्न करता हूँ। बुद्धिमानों को आरंभ में वेद के रूप में ज्ञान मैंने दिया। वेद का उपदेश पाकर ही तेजस्वी लोग तेजस्वी बने, इसीलिए तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवानों का काम और राग से रहित बल मैं हूँ। हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं सब प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न रहने वाली लालसा हूँ। पशु पक्षी अपने बल को काम पूर्ति अथवा राग पूर्ति में लगाते हैं। दीन रक्षा के लिए बल प्रयोग मैंने मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे यजुर्वेद के अनुसार आदि उपदेश देकर सिखाया, अर्थात हम मित्र को मित्र की दृष्टि से समान दृष्टि से देखें, तथा जिस प्रकार पशु पक्षियों में माता बहन पुत्री आदि का कोई विवेक नहीं होता, इसी प्रकार मनुष्य भी काम पराधीन होकर पशुवत व्यवहार करते, किंतु मैंने ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर मनुष्यों को धर्मयुक्त काम तथा धर्म विरुद्ध काम, इस दो प्रकार के कामों में विवेक करना सिखाया। इसलिए इस मानव समाज में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ। अभिप्राय यह है कि बलवानों के काम और राग से क्या अभिप्राय है। काम अर्थात अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और राग अर्थात प्राप्त वस्तु को अपने पास बनाए रखने की इच्छा। इन दो इच्छाओं से व्यक्ति समाज तथा देश अपना बल प्रकट करते हैं। जब किसी समाज में काम तथा राग उद्वेलित हो जाते हैं, तब अपना बल प्रदर्शित करने के लिए वह समाज वह देश उत्पात करता है, युद्ध करता है, दूसरे पर आक्रमण करता है। बल प्रदर्शित करने का यह कुत्सित रूप है। जिस बल में काम तथा राग न हो, वह दैवीय बल है, ईश्वरीय बल है। बल के रूप में भगवान का विशुद्ध रूप है। धर्म के अविरुद्ध लालसा का क्या अभिप्राय है? प्रायः मनुष्य अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए अधार्मिक कार्य करता है। ऐसी धर्म विरोधी लालसा में भगवान नहीं रहते। भगवान रहते हैं उस लालसा में जो धर्म के अनुकूल हो। चारित्रिक शुद्धता होनी अत्यावश्यक है। जीवन की सुंदर खेती में जो बोया जाता है, वही परिणाम रूप में प्राप्त होता है। माँ कर्म फल हेतुर भूर माते संगोस्त्व कर्मणि, दूसरे अध्याय में आपने सुना होगा। मिर्ची का बीज अगर बोया है तो बदले में परिणाम स्वरूप धान नहीं होगा। आचरण में शुद्धता जीवन की श्रेष्ठता है। गुरु आश्रम में आचार्य द्रोण ने ज्ञान शिक्षा दुशासन को भी दिया था, लेकिन व्यवहार में वह कहीं दिखाई नहीं देता था। जयद्रथ का चरित्र भी आप देख सकते हैं। आज के समाज में भी असंख्य दुशासन और जयद्रथ हैं। ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण को आप्त पुरुष लिखा है। आप्त पुरुष अर्थात जिसके चरित्र में लेश मात्र भी दोष न हो। श्रोताओं, आज आपने गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 11 तक श्लोकों की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। गीता संदेश में आज आपने गीता के 7वें अध्याय से श्लोक 8 से 11 की व्याख्या सुनी। व्याख्याकार थी डॉ ऋचा त्रिवेदी। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम

0: आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बस होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच का आंखों देखा हाल।
1: आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल।

मदन मोहन जी, बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर। मेरे पिताजी में और उनमें बहुत दोस्ती थी, और दोस्ती शुरू हुई गाने से, और वो चलते चलते घोड़े तक पहुंच गई। और मदन मोहन जी कोई भी कंपोजिशन करे नए गाने का, तो वो मेरे पिताजी को पकड़ के रेस कोर्स में ज़रूर सुनाए। तो एक बार डर्बी में मेरे डैडी ने कहा चल दूर ट्यूशन सुनने के लिए, तो उन्होंने मुझे मेरे डैडी को एक गाना सुनाया, तब वो रिकॉर्ड

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और इसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी

0: विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognises that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi